मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 17वीं तिथि तदनुसार 8 जुलाई 2026। इस समय प्रातः की 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत

निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रद्धा भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे कौरी के लाल, देवलोक के तुम सरताज, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। सुन लो मेरी पुकार, प्रभु कर दो नैया पार।

जिनके मस्तक मोर मुकुट हैं शोभे, होठों पे बांसुरी प्यारी, उंगली पर गोवर्धन पर्वत और सबके दिल में गिरधारी।

माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, खरे कृष्णा खरे मुरारी पूछती जिन्हें दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे घनश्याम की।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थीय जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, हेमंती शुक्ला, साधना सरगम और साथियों के मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार।
1: हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जातीय व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा, जिसकी जड़ें हमारे जीवन में इतनी पहुंच गई हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी वे अपनी जगह पर अटल तथा अडिग मालूम होती हैं। हमारा संविधान इन्हें कभी भी मान्यता प्रदान करे अथवा नहीं, वह भी इन परंपराओं को बदलने में असमर्थ मालूम होता है। यह देश के सामाजिक जीवन में हजारों वर्ष से छाई हुई है। इस जटिल समस्या का समाधान नितांत आवश्यक है। संसार में कभी भी दो

0: सभ्यताएं आपस में टकराई नहीं, सभ्यताएं टकराया भी नहीं करती। संसार में मानव हजारों कर दिए जाएं तो वैश्यानापन ही पाया जाएगा। आज जिन्हें हम सभ्य कहते हैं उनकी सभ्यता की तह में अनगिनत असभ्य अवसर पाते ही सर उठा लेती हैं। चाहिए ये कि असभ्यता छोड़ दी जाए और नवीन प्रगतिशील सभ्यता के निर्माण में हम जुट जाएं, जिससे राष्ट्र का भारत के निर्माण में प्राचीन काल के प्रकाश के वर्तमान की अहम समस्याओं से जूझकर उनके समाधान में भरपूर योगदान प्रदान करें। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के आवश्यक रंग रूप को जैसा का तैसा रखते हुए उन्हें एक नया रंग रूप प्रदान करें, जो एक सुदृढ़ और सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है। देश में आपसी घृणा की आग भड़क रही है। ऐसी सूरत में चमन के निर्माण का कार्य पागलपन दिखता है। यह आग मानवता और भलमन साहत की स्वर्णिम कोमल भूमि को झुलसा दे रही है। इसमें भला भोले भले सुंदर फूल कैसे खिल पाएंगे? हम पशु वृत्ति से नैतिक मानववादी व्यवहार कैसे अपना सकेंगे? दुनिया में इंसानियत का कैसे फल फूल सकेगा? जीवन की सर्वोत्तम सुख ये है कि मानव की सेवा कर उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो कि वो कोई घटिया काम नहीं कर रहा है। सर्वोत्तम जीवन इसी को कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज के लोगों के साथ सहानुभूति और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव हो। बुद्धिमान लोग वे हैं जो अपनी भावुकता पर पूर्ण नियंत्रण रखने में समर्थ हों, जिनमें अपने विरोध का ठंडे दिल से उचित जवाब दे सकने की क्षमता हो। चरित्र निर्माण का कार्य वास्तव में एक महान संघर्ष है। ये वीरों का विशेष गुण है, उनका नैतिक साहस है। जिसे चरित्र निर्माण करना है उसे इस गुण को अपनाना होगा। आपका चरित्र और निस्वार्थ सेवा आवश्यक है। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे सर्वांगीण विकास संभव हो तथा आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत हों। बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक व कम खर्चीली शिक्षा योजना है। ये कला केंद्रित है, ग्राम व नगर की आवश्यकताओं को पूरा करती है, चारित्रिक और आर्थिक उपलब्धियों से परिपूर्ण है। बच्चे क्रिया द्वारा सीखने में रुचि रखते हैं, वे हाथों के द्वारा सोचते और क्रिया करते हैं, इसलिए ये शिक्षा कला केंद्रित है। स्वस्थ सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए इस शिक्षा का विशेष महत्व है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी पशुओं में बांझपन के रोग के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर वाणी अग्रवाल कॉन्टेक्ट लेंस के विषय में जानकारी देंगी। डॉक्टर रोहितास के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर।

प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुक्ल बिलावल में ख्याल गायन। 11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत।

शो पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 12 बजे सुनिए का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनेगा नम्रता सिंघल की कहानी जिसका शीर्षक होगा गौरी। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा कार्य क्षेत्र में समझदारी और संतुलन। मेरी माटी मेरा देश के तहत हम जानकारी देंगे भाकड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना के बारे में। डॉक्टर मेघा सचदेवा के गाय गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत। साथ ही सुनी जा सकेगी आशुतोष तिवारी की वार्ता, जिसका विषय होगा राष्ट्र के समग्र आर्थिक आकार का द्योतक है सकल घरेलू उत्पाद। साथ ही हम जानकारी देंगे डीएनए पहचान तकनीक के विषय में, और जीने की कला का विषय होगा सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है महत्वाकांक्षा। छह बजे ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुनेंगे आम की वैज्ञानिक खेती के विषय में डॉक्टर तेजराज सिंह खाड़ा की वार्ता। लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे महिला सामर्थ्य योजना के बारे में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। छह 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में सुनेगा अरविंद कुमार दोहरे से काव्य पाठ। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा प्रदूषण नियंत्रण और समाज। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा पूर्णिमा सुधाकर की वार्ता, जिसका विषय होगा विकास की आंधी में गुम होते जीवन मूल्य।

और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा राधा गोविंद दास का राग दरबारी में धमार गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्रीराम चरित मानस गान।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम

राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे रविन्द्र साठी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं पशुओं में बांझपन के रोग के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
1: प्रिय किसान बंधुओं, पशुओं में बांझपन का होने के कई कारण हैं, जैसे कि मादा पशुओं जैसे गाय या भैंस का गर्मी में नहीं आना। साधारणतः गर्भित मादा पशु शांत रहते हैं और उनमें गर्मी के लक्षण नहीं पाए जाते। इसी प्रकार प्रायः ब्याने के 2 या 3 माह तक भी पशु गर्मी में नहीं आते, परंतु इसके पश्चात गर्मी के लक्षण नहीं दिखने पर मादा पशु को बांझपन का रोग हो सकता है। मादा पशुओं के जनन अंगों में

स्थित रजग्रंथि पर गांठ या मस्से हो जाने पर भी पशु गर्मी में नहीं आते और ऐसी दशा में कुशल पशु चिकित्सक की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ मादा पशुओं का ऋतुकाल छोटा होता है, विशेषकर ओसर, बछिया और पाड़ियों में, जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशुओं में गर्मी के लक्षण ठीक प्रकार से देख नहीं पाते और उनके पशु गर्भित होने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसे मादा पशु जो देरी से गर्मी में आते हैं या बिल्कुल गर्मी के लक्षण नहीं दिखाते, उन्हें पशु चिकित्सक को दिखाकर बांझपन की चिकित्सा करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस नर अथवा मादा पशुओं के खान पान का शुरू से ध्यान न दिया जावे, वैसे पशुओं में भी बांझपन के रोग हो सकते हैं। पशु चारे में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा न होने पर एवं लगातार कई दिनों तक ऐसा चारा बढ़ते बछियों और पाड़ियों द्वारा खाए जाने पर उनकी शारीरिक वृद्धि में देरी होती है, फलस्वरूप जननांगों का उचित विकास नहीं होता और मादा पशु देरी से ऋतुकाल के लक्षण दिखाते हैं अथवा बिल्कुल नहीं दिखाते। अतः यहाँ पर पशुपालकों को चाहिए कि वे प्रारंभ से ही अपने पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा दें, जिससे उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पशुओं को प्राप्त हों। पौष्टिक आहार खिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि में काम आने वाली हार्मोन ग्रंथियां भली प्रकार से कार्य करती हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में हार्मोन शरीर को प्राप्त होता है, जो कि पशुओं को बांझपन रोग से बचाते हैं। किसान बंधु अपने पशुओं के चारे में हरे चारे को अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुतायत होता है, जो कि पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सादा नमक 50 ग्राम तथा 100 ग्राम खड़िया मिट्टी भी पशुओं के चारे में प्रतिदिन मिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक खनिज जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी आदि प्राप्त होते हैं। आजकल बाजार में बने बनाए खनिज लवण के मिश्रण भी दवा की दुकानों पर उपलब्ध हैं, जिसकी 25 से 50 ग्राम की मात्रा चारे में प्रतिदिन डालकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशुओं में होने वाले दीर्घकालिक रोग भी बांझपन रोग का कारण हैं, जैसे कि पशुओं के शरीर के बाहर व भीतर पाए जाने वाले परजीवी एवं टीबी जैसे रोग, जो कि पशुओं के शरीर को कमजोर बनाते हैं और जिसके कारण पशुओं की प्रजनन क्षमता घट जाती है। ऐसी दशा में भी पशु चिकित्सक की सलाह से रोगी पशु की उचित चिकित्सा करानी चाहिए। दीर्घकालिक रोगों के अतिरिक्त गाय और भैंसों के गर्भाशय में पाए जाने वाली सूजन भी बांझपन का एक मुख्य कारण है। गर्भाशय की सूजन जीवाणु और विषाणु के संक्रमण द्वारा होती है और यह संक्रमण कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि गर्भाशय में घाव होना या ब्याते समय गर्भाशय के रास्ते में रुकावट होना अथवा गर्भ का गिरना अथवा जेर का भीतर रुक जाना तथा पशुग्रह का वातावरण स्वच्छ न होना। गर्भाशय की सूजन होने पर गर्भाशय के भीतर मवाद बनने लगती है और पशु के शरीर से दुर्गंध आने लगती है तथा योनि द्वार से सफ़ेद, पीला अथवा लाल रक्त मिश्रित स्राव बाहर आने लगता है, जो कि गर्भाशय के सूजन की पहचान है। ऐसी दशा में पशु चिकित्सक की सहायता से गर्भाशय की सफाई कराने के पश्चात कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कराना भी आवश्यक हो जाता है। गर्भाशय की सूजन के अलावा गर्भधारण में रुकावट संबंधी कुछ कारण भी बांझपन का रोग पशुओं में उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि रजकण तथा शुक्राणुओं के आकार प्रकार में असमानता होना, रजवाहिनियों के रास्ते में रुकावट होना। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि रजस्खलन होने के 2 से 8 घंटे के भीतर वीर्यदान कराने पर रजकणों को शुक्राणुओं द्वारा गर्भित कराने में 70% तक सफलता मिलती है। अतः यहाँ पर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि मादा पशु के गर्मी में आने पर इसे 10 से 12 घंटे पश्चात ही वीर्यदान करावें, क्योंकि रजकण की आयु शुक्राणुओं की आयु से कम होती है। निश्चित गर्भधारण के लिए यह भी आवश्यक है कि उत्तम प्रजनन क्षमता वाले सांड का वीर्य उपयोग में लाया जाए। ऐसे सांडों के रखरखाव और उनके उचित पोषण पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है, ताकि उनकी दीर्घकाल तक प्रजनन क्षमता बनी रहे। गर्भित मादा पशुओं के गर्भाशय में पल रहे भ्रूण के रोग ग्रस्त हो जाने पर भ्रूण नष्ट हो जाता है तथा यह भी बांझपन का कारण हो सकता है। ट्राइकोमोनाज, विब्रियो और ब्रुसेला नामक जीवाणुओं के कारण भ्रूण रोगग्रस्त हो सकते हैं। अतः इन बीमारियों से बचाव के लिए गर्भधारण से पूर्व मादा पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। मैं अंत में बांझपन के रोगों का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव देता हूँ। सबसे पहले पशुओं में नज़दीकी रिश्ते वाले संसर्ग को रोकना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में इनब्रीडिंग कहते हैं, जिससे कि अवांछित आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में जाने से रोका जा सके, जो कि बांझपन का कारण बनते हैं। दूसरा उपाय अच्छे रखरखाव का होना चाहिए और इसके लिए पशुपालक को अपने प्रत्येक प्रजनन योग्य पशुओं का ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस रिकॉर्ड में पशु की जन्म से प्रजनन योग्य आयु तक

0: नापा गया वजन वह पहले ऋतुकाल की तिथि, वीर्यदान की तिथि, साँड़ का नाम, गर्भ जांच की तिथि, ब्याने की तिथि दर्ज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुपालक को सवेरे पशुगृह में स्थित गाय अथवा भैंसों का निरीक्षण करते हुए देखना चाहिए कि पशु के योनि द्वार से बाहर आने वाले स्राव का रंग कैसा है। यदि सफ़ेद चमकीला स्राव है तो ऐसे मादा पशु को गर्मी में समझना चाहिए और उसके गर्भधारण हेतु प्रयास करना चाहिए। किसी गाय या भैंस को ब्याने के 60 दिन के पश्चात ही गर्भधारण कराना चाहिए ताकि गर्भाशय पूर्ण रूप से सिकुड़ सके। जिस गाय या भैंस का गर्भपात हो गया हो अथवा जेर भीतर रह गई हो उसे 3 से 4 माह के पश्चात ही गर्भित करवाना चाहिए। इसी प्रकार एक सांड द्वारा 3 बार से अधिक गर्भधारण कराने पर यदि गाय गर्भित न हो तो उसे किसी अन्य सांड के पास ले जाना चाहिए। इसी प्रकार सुबह गर्मी के लक्षण दिखाने वाली गाय अथवा भैंस को सायंकाल में तथा सायंकाल में गर्मी के लक्षण दिखाने वाले पशु को सवेरे गर्भित कराना ठीक रहता है। 250 किलोग्राम शारीरिक वजन से ऊपर की ओसर बछिया को गर्भित कराना ठीक रहता है। सभी गर्भित गाय अथवा भैंस का दूध ब्याने से 2 माह पूर्व निकालना बंद कर देना चाहिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बांझपन के रोग संबंधी इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अवश्य लाभान्वित होंगे।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी पशुओं में बांझपन के रोग के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ आह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी

0: अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉक्टर पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकतारालेन पराजित्य 54-29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि इससे दोनों

0: देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सौराष्ट्र कच्छ विदर्भ राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the

0: जो आंख की काली पुतली के ऊपर लगाए जाते हैं। यह एक तरह से आंख पर चिपके हुए चश्मे का काम करते हैं। जिस इंसान को चश्मे के बिना साफ दिखाई नहीं देता, वह इनका प्रयोग आसानी से कर सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस को सामान्यतः सुबह उठकर लगाना पड़ता है और रात को सोने से पहले इन्हें उतारना आवश्यक होता है। यह कई प्रकार के होते हैं। सख्त या हार्ड लेंस PMMA नामक प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन इन्हें लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आजकल यह लेंस एक अलग तरह की प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सकता है और लगाने में यह ज्यादा आरामदायक होते हैं, लेकिन आजकल इनका प्रयोग भी कम होता जा रहा है और इनकी जगह पर मुलायम या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस HEMA पदार्थ के बने होते हैं और इनमें 40-80% पानी होता है। यह आंख के काले हिस्से से थोड़े बड़े होते हैं और पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं। यह एक तरह के खास सॉल्यूशन में डुबो कर रखने पड़ते हैं, अन्यथा यह सूख कर खराब हो जाते हैं। इन्हें उतारना और लगाना बहुत आसान है और इसे कोई भी अपने आप लगा सकता है। इन्हें इस्तेमाल करते समय साफ सफाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब भी लेंस लगाएं या उतारें, तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेने चाहिए। अगर लड़कियां आंखों का मेकअप करना चाहें, तो यह लेंस लगाने के बाद ही करना चाहिए। अगर लेंस लगाने से आंखें लाल हो जाएं या धुंधलापन लगे या आंख में दर्द हो, तो इसे इस्तेमाल ना करें तथा अपने नेत्र चिकित्सक को दिखा लें। अगर लेंस पहनकर तेज हवा में बाहर निकलें, तो इसके ऊपर धूप का चश्मा लगाएं। अगर लेंस पहनकर तैरना चाहें, तो तैराकी चश्मों का प्रयोग करें। लेंस को पहनकर रात को सोना नहीं चाहिए। आजकल कुछ इस तरह के लेंस उपलब्ध हैं, जो कुछ दिनों के लिए लगातार लगाए जा सकते हैं, लेकिन भारत के वातावरण के लिए यह ठीक नहीं है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखें, तो कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक है। आजकल तो कुछ लोग लेंस आंखों का रंग बदलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुलाबी, नीला, हरा इत्यादि। यह लेंस आपकी पोशाक से मेल खाते हैं और इन्हें पहनकर आप और अधिक आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन यह लेंस पार्टी में जाते समय कभी कभी ही पहनने चाहिए और इन्हें किसी और को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। याद रखें, एक लेंस एक ही इंसान के लिए होता है, इन्हें अदल बदल कर नहीं पहन सकते। कॉन्टैक्ट लेंस कुछ बीमारियों में भी प्रयोग होते हैं, जैसे घाव इत्यादि। यह लेंस डॉक्टर के परामर्श पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी आप लेंस लगाएं, तो डॉक्टर की सलाह का पालन अवश्य करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कॉन्टैक्ट लेंस के विषय में डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में गीतेश गान।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के विषय में डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता।
1: कॉन्टैक्ट लेंस एक पतली प्लास्टिक के बने हुए लेंस होते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देशगण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।
1: को हम सब बचाए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
3: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए। ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है, बिल्कुल ठीक बात है। न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम

0: प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत यह तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
2: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक भारी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अलनीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों

0: आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। डॉक्टर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र अब आरटीआई के माध्यम से ओएमआर शीट प्राप्त करने को आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल मई में आयोजित परीक्षाओं के घोषित परिणाम वाले छात्र 15 जुलाई तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रोताओं, इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इग्नू में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज स्थित इग्नू केंद्र पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ सोचना है, रेलवे ने गाड़ी संख्या 17631 और 17632 नांदेड़ टनकपुर नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 12 जुलाई से शुरू किया जाएगा। ट्रेन नांदेड़ से 12 जुलाई और टनकपुर से 14 जुलाई से चलना प्रारंभ होगी। ट्रेन नांदेड़ से प्रत्येक रविवार को रात 11:40 पर चलकर अगले दिन रात 9:50 पर आगरा कैंट और सुबह 5 बजे टनकपुर पहुंचेगी। ट्रेन टनकपुर से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे चलकर शाम 5:50 पर आगरा कैंट और अगले दिन शाम 4:30 पर नांदेड़ पहुंचेगी। रेल यात्रा करने वालों के लिए कुछ और सूचना है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09451 और 09452 गांधीधाम भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जी हां श्रोताओं, गांधीधाम से प्रत्येक शुक्रवार और भागलपुर से प्रत्येक सोमवार को चलने वाली ट्रेन को पूर्व में 29 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन को गांधीधाम से 31 जुलाई तक और भागलपुर से 3 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस तरह फेरे बढ़ाने से हजारों यात्रियों को लाभ होगा और कार्यक्रम आसपास में सूचनाएं यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। इतना ही नहीं श्रोताओं, रेल यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए कुछ और भी सूचनाएं हैं। जी हां श्रोताओं, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04004 और 04003 दिल्ली सराय रोहिला अशोकनगर दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक एक फेरा लगाएगी। ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से 27 जुलाई रविवार को और अशोकनगर से 30 जुलाई गुरुवार को चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से दोपहर 12:15 पर चलकर शाम 5:10 पर आगरा कैंट और अगले दिन सुबह 4 अशोकनगर पहुंचेगी। ट्रेन अशोकनगर से 30 जुलाई को शाम 5 चलकर रात 2:40 पर आगरा कैंट और सुबह 8:45 पर दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी और इस ट्रेन में एक एसी थर्ड, दो स्लीपर और 19 जनरल कोच होंगे।

इसके साथ साथ नई दिल्ली कोसीकला ईएमयू ट्रेन का धौलपुर तक विस्तार किया गया है। 6407364074 नई दिल्ली कोसीकला दैनिक ईएमयू प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वापसी में धौलपुर से चलेगी। ट्रेन कोसीकला से सुबह 6:35 पर चलकर सुबह 9:05 पर आगरा कैंट और 10:50 पर धौलपुर पहुंचेगी। ट्रेन धौलपुर से शाम 4 बजे चलकर शाम 4:55 पर आगरा कैंट, 5:55 पर मथुरा जंक्शन और शाम 5:25 पर कोसीकला पहुंचेगी। ये ट्रेन 12 कोच की होगी और यात्री जनरल टिकट लेकर इसमें यात्रा कर सकेंगे।

इतना ही नहीं, श्रोताओं, रेलवे ने गाड़ी संख्या 09601 और 09602 मदार जंक्शन, पटना जंक्शन, मदार जंक्शन समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन मदार जंक्शन से 16 जुलाई से 24 सितंबर तक हर गुरुवार को और पटना जंक्शन से 17 जुलाई से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन मदार जंक्शन से सुबह 6:40 पर चलकर दोपहर 12:45 पर ईदगाह जंक्शन और अगले दिन सुबह 8:15 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 10:15 पर चलकर रात 3:15 पर ईदगाह जंक्शन स्टेशन और दोपहर 1:20 पर मदार जंक्शन पहुंचेगी।

रेल यात्रा में थोड़े से बदलाव की भी घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 12547, 12548 आगरा कैंट साबरमती एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 22547, 22548 ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव की घोषणा की है। दोनों ट्रेनों का टर्मिनल स्टेशन साबरमती के बजाय अब गांधीधाम स्टेशन होगा। साबरमती स्टेशन से गांधीधाम स्टेशन की ट्रेन से दूरी मात्र 5 मिनट की है, तो यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें ध्यान रखना होगा कि अब ये ट्रेन साबरमती के बजाय गांधीधाम स्टेशन से चलेगी, तो यात्री अपनी सुविधा अनुसार साबरमती अथवा गांधीधाम स्टेशन कहीं से भी उतर और चढ़ सकते हैं।

और अब मौसम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, ताज नगरी समेत पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ कम दबाव वाला क्षेत्र सघन होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इसके साथ साथ ही ये तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जल्द ही इसका असर अब दिखने वाला है, जो कि आपने देखा आज सुबह से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इसी तरह अगले 48 घंटों में आगरा समेत सभी करीबी जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जो कि ऑलरेडी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर खिसकने से प्रदेश में दोबारा मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके चलते बीते कई दिनों से बना बारिश का लंबा चक्र अब टूट चुका है। आपको बता दें, ये बारिश आज से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी। इस बीच दिन और रात में कई बार मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसा होने पर तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट हो सकती है। लोगों को फील गुड का एहसास होगा। हालांकि 11 जुलाई के बाद आसमान फिर से साफ होगा। इसके बाद तापमान में दोबारा बढ़ोतरी के संकेत हैं और गर्मी और उमस का दौर लौट सकता है, लेकिन अभी

घंटों तक झमाझम बारिश हो सकती है। तो श्रोताओं, ऐसे में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। मौसम तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है। विशेषकर रात में अधिक बारिश होने के आसार हैं, इसलिए शादी विवाह और दूसरे आयोजनों की दावतें खतरे में पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि खुले में आयोजन न रखें, इसे बंद स्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि इन दिनों आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहता है। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए इंडोर आयोजन ही किए जाए। इसके अलावा कुछ और भी सावधानियां बरतनी होंगी। दोपहिया या पैदल चलने वाले छाता या बरसाती लेकर ही घर से बाहर निकलें। खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जल भराव में न जाएं, गड्ढे हो सकते हैं, गिरने का खतरा है, यानी कि जहां पर गड्ढों वाली सड़क है वहां सावधानी से जाएं। कोशिश करें आप उस एरिया को छोड़ के निकले। गंदे पानी के भराव से गुजरने पर त्वचा संबंधी रोगों का भी डर हो सकता है। जर्जर मकान, दीवार, छज्जा, पेड़ों के पास ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सभी चीजें कभी भी भरभराकर गिर सकती हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप भीग जाते हैं तो भीगने के बाद तत्काल सिर और शरीर को सुखाना जरूरी है। विशेष सावधानी के तौर पर कूलर को सावधानी से चलाएं और करंट से अपना बचाव करें। बारिश के दौरान बिजली के पोलों, ट्रांसफार्मर के पास ना जाएं। अधिक हरियाली, पेड़ों पर बिजली अधिक गिरती है, तो ऐसे समय में पेड़ों से दूर रहें। घरों में मोमबत्ती, चार्जेबल लाइट, माचिस भी अवश्य रखें, और इसके साथ साथ जरूरी अनाज, सब्जियां और अपने राशन का सामान स्टॉक करके चलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में।

ओवा सोनी पुत्री अशोक से सोनी निवासी न्यू सरस्वती नगर बलकेश्वर रजवाड़ा कमला नगर आगरा से दिनांक 24 मई 2026 से लापता है। ओवा की उम्र 24 वर्ष, चेहरा लंबा और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय ओमा ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। श्रोताओ, ओमा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना बलकेश्वर कमला नगर के पते पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार महावीर पुत्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम चर्रपुरा थाना फतेहाबाद आगरा से दिनांक 21 अप्रैल 2026 से लापता है। महावीर की उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय महावीर ने आसमानी टी शर्ट, काली पैंट और लाल रंग की चप्पल पहनी हुई थी। महावीर के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना फतेहाबाद आगरा के पते पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार तमन्ना पुत्री सुनील निवासी नगला इमली थाना जगनेर आगरा से

दिनांक 14 अप्रैल 2026 से लापता है। तमन्ना की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट, चेहरा लंबा और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय तमन्ना ने कुर्ता और सलवार पहनी हुई थी। तमन्ना के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना जगनेर आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अब छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई का मौका भी देगा। जी हाँ श्रोताओं, विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में 6 नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। इनमें प्रवेश लेने वाले छात्रों को उद्योगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2026-27 के लिए एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों में अप्रेंटिसशिप, व्यवहारिक प्रशिक्षण और स्टाइपेंड भी मिलेगा। इससे उन्हें कमाने का मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ उद्योगों का वास्तविक अनुभव देगा और प्रशिक्षण अवधि में मिलने वाला स्टाइपेंड आर्थिक सहयोग के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। इससे वे रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए सक्षम बन सकेंगे। पाठ्यक्रम उद्योगों की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित है। हर सेमेस्टर में उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों संग काम करने का मौका मिलेगा, तो ये अच्छी खबर है। और अप्रेंटिसशिप के दौरान वास्तविक कार्य अनुभव के साथ साथ मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बेस्ट टीचर अवार्ड 2025-26 के लिए नियमित और स्थायी शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई है। और आज की इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों

0: से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी

0: केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के

0: हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि हॉर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार्य थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमरीका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup.

0: Against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Varga scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes, while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
2: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in Focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete, and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull runs turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's Office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes a sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की

0: 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निपटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज्जम जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कवानीन और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निपटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है।
0: भारत के तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तस्वुर, नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकतदारी के लिए कहा।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिये में शिरकत की। खसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
2: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी

0: जीने आरंभ कर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम के दफ्तर पीएमओ ने मुख्तलिफ शोबों पर एल नीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखीर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए, ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरतेहाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरतेहाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली, गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवस्सुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमरीका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमरीकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया है, जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाजत दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मंसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3 के मुकाबले 4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2

0: मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एंजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकई में कम अज कम 3 अफराद के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकिरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एलनीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के जुगल स्वरों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे आरडी बर्मन।

साथियों, इस गीत में स्वर थे ए हरिहरन और सुरेश वाडेकर के। शब्द रचना गुलजार की थी, संगीत निर्देशन था विशाल का। फिल्म का नाम था माचिस।

0: साथियों विशाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर को, गीतकार थे गुलजार। फिल्म का नाम था सत्या।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाए हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया है MM करीम ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे गाए हैं चित्रा ने। गीतकार है महबूब, संगीतकार है ए आर रहमान, फिल्म का नाम है बॉम्बे।

साथियों, चित्रा की गाय इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
2: ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं PFO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनी

0: कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री साकेत सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
1: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक

0: जनपद के विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
1: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव की वजह से बरसात की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिली के विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क बीज विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था, भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
2: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
3: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्रीदेवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4 से 5 हजार व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगाओं के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग

0: के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

आरडी परवन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना। स्वर्थ किशोर कुमार का फिल्म थी बुढ़ा मिल गया।

साथी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के जगह स्वरों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्म का नाम था अनजाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के जुगल स्वरों में। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे आर डी बर्मन। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत गाती कैफे आज में फिल्म का नाम था हीर रांझा। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर रोहितास के गाय कुछ डोक गीत।

डॉक्टर रोहित दास के गाए इस लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभी गीत अभी आपने सुना बेताब फिल्म से, स्वर्गीय लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने।

0: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वरों में। गीतकार थे गुलशन भावरा, फिल्म थी ये वादा रहा।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

और अब लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, धुन बनाई है शिव खरी ने।

श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लव स्टोरी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है आरडी परमंडी।

साथियों आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है एक दूजे के लिए, स्वर है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुक्ल बिलावल में ख्याल गायन

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुक्ल बिलावल में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो में सुबह के 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार, और मैं आज आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीतू दुबे आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कलाकार वो होता है जो अपनी कला के माध्यम से लोगों के मन को छू ले, अपनी प्रतिभा से लोगों के दिलों में जगह बना ले। चाहे वो कला कोई भी हो, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला या साहित्य। साथियों, आज हम आपसे जिन कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह। जी हाँ साथियों, याद आया ना उनका चेहरा, वो प्यारी सी मासूम सी चेहरे वाली नीतू सिंह, जिनकी मुस्कुराहट देखते ही मन खुश हो जाता है। जी हाँ साथियों, ये वही नीतू सिंह हैं जिन्होंने 70-80 के दशक में एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। उस दौर में नीतू जी का नाम बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल था।

जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के बारे में, जिनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। इन्होंने बाल कलाकार से लेकर सफल नायिका तक का शानदार सफर तय किया। इनका मूल नाम हरमीत कौर है और साथियों, काफी कम उम्र में ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बाल कलाकार के रूप में ये कई फिल्मों में नजर आईं। 1966 में आई फिल्म सूरज में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। बचपन से ही इनके अंदर की प्रतिभा दिखाई देती थी। किशोरावस्था में इन्होंने नायिका के रूप में कदम रखा और जल्दी ही अपनी चुलबुली अदाओं और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों की ये पसंद बन गई। साथियों, बाल अभिनेत्री के रूप में इनकी दो कलियां फिल्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इनकी वयस्क और मुख्य अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म थी वो 1973 में आई रिक्शावाला थी, लेकिन ये फिल्म कोई खास नहीं चली। इसके बाद यादों की बारात फिल्म का ये गाना लेकर हम दीवाना दिल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई।

साथियों, आपको पता है नीतू सिंह को बचपन से ही डांस का शौक था और उन्होंने बैजंती माला के डांस स्कूल से प्रशिक्षण लिया था। और जब बैजंती माला की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने उनके अंदर के कलाकार को पहचान लिया और उन्होंने ही नीतू सिंह को सूरज फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम दिलाया। उन्होंने अपने अभिनय से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, दीवार, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, काला पत्थर और याराना जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया। वे अक्सर अपनी चुलबुली और जीवंत भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। 1970 और 80 के दशक में इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही। खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी और दूसरा आदमी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल करा दिया। साथियों, ऋषि कपूर के साथ रियल जोड़ी के साथ साथ ही 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ रियल जोड़ी भी बना ली, मतलब इन्होंने उनसे शादी कर ली।

साथियों कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहते हैं इन दोनों की मुलाकात बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई, जहां पर ये किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहीं पर ऋषि कपूर को इनकी सादगी इतनी पसंद आई कि वे अपना दिल ही इन्हें दे बैठे और 22 जनवरी 1980 में इनका विवाह हो गया। उसके बाद नीतू जी ने फिल्मों से दूरी बना ली और पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित किया। उनके दो बच्चे हैं जो आज हिंदी फिल्मों के प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं, रणवीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर। साथियों, समय आगे बढ़ता रहता है, जीवन बदलता है। वर्षों बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में फिर से वापसी की और अपनी अभिनय क्षमता का परिचय फिर से दिया। आज वे कपूर परिवार की सम्मानित सदस्य और हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं।

साथियों, लंबे अंतराल के बाद नीतू कपूर ने 2009 में फिल्म लव आजकल के साथ बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के साथ दो दूनी चार और जब तक है जान जैसी सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से एक बार फिर दर्शकों का स्नेह प्राप्त किया। अपनी सहज मुस्कान, जीवंत व्यक्तित्व और स्वाभाविक अभिनय आज भी उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए हुए है। साथियों, नीतू जी का फिल्मी सफर इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, मेहनत और सादगी व्यक्ति को लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखती है। वे भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने हर दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार कार्यक्रम में नीतू सिंह को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मान। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो साथियों, बने रहिए अपनी रेडियो दोस्त नीतू दुबे के साथ और आनंद लीजिए इस खास प्रोग्राम का जो लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग विषय पर और सुनवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही जल है। हम जल के बिना रह नहीं सकते, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, जल का अधिक दोहन और वर्षा के पानी का उचित उपयोग न होने के कारण पता है जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है वर्षा जल का संचयन, जो कि बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो ही गया है, तो वर्षा का आनंद लेते हुए अगर जल का संचयन भी कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी हमारी जरूरत है।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे सुनकर मन खुश हो गया। साथियों, जीवन में खुशियां बहुत जरूरी हैं और हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हमारी जरूरतें पूरी होती रहें। वैसे तो सब जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब हमारे लिए जरूरी है और इन सबसे जरूरी है जल, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो क्यों ना समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए। तो हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन के बारे में, जिसका अर्थ है वर्षा के जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। छतों, आंगनों और खुले स्थानों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंकों या भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचाना, इससे भूजल स्तर बढ़ता है और आवश्यकता के समय पानी उपलब्ध रहता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब सुबह से शाम तक जल पर ही निर्भर होते हैं। तो वर्षा का आनंद लेते लेते अगर ये काम भी कर लिया जाए तो अच्छा है।

साथियों, वर्षा होती है तो चारों तरफ का मौसम तो सुहाना हो ही जाता है और वर्षा जल संचयन से हमें बहुत लाभ भी होता है। साथ ही इससे पानी की बचत होती है क्योंकि वर्षा का हजारों लीटर पानी व्यर्थ नहीं बहता। भूजल स्तर सुधरता है और पता है सूखे जैसी समस्या में भी जल उपलब्ध रहता है। ये बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है और आप तो जानते ही हैं कि खेती और दैनिक उपयोग के लिए कितना पानी जरूरी होता है, तो इसके लिए वर्षा संचयन पानी का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

साथियों, वर्षा जल संचयन में वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकें शामिल हैं। वर्षा जल संग्रहण उन क्षेत्रों के भूजल स्तर को बेहतर बनाने का एक कारगर तरीका है जहां पानी की कमी है। इकट्ठा किया हुआ जल भविष्य में विशेष रूप से संकट और आपदाओं के समय पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

साथियों, हमें जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हवा और पानी की। इसको देखते हुए और बढ़ते जल संकट के लिए वर्षा जल संचयन अब बहुत जरूरी हो गया है। जल की बर्बादी रोकने और इसे आगे के कार्यों के लिए पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन एक आवश्यक विधि है। संरक्षित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है और पता है इसे शुद्ध करके घर में पीने और खाना बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में ताजे पानी और भूजल की बढ़ती कमी के साथ जितना संभव हो उतना पानी बचाना आवश्यक है। वर्षा का जल सभी दिशाओं से गिरता है और इस पानी को बर्बाद होने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वर्षा के जल को शून्य कठोरता और लगभग उदासीन पीएच मान के कारण मीठा जल माना जाता है। ये जल बहुत काम आता है। उद्योगों, संस्थानों, घरों, अस्पतालों आदि के लिए भी ये लाभकारी है।

साथियों, जल है तो कल है। आज के समय में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए वर्षा का जल संचयन महत्वपूर्ण है। धरती पर बारिश की हर बूंद हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। ताजे बारिश का पानी जमीन पर मोती के समान गिरता है, इसलिए विकासशील क्षेत्रों और प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से बारिश के पानी के महत्व को हर एक को समझना चाहिए। जब भी बारिश हो, बारिश के पानी को मानव निर्मित तालाब या टैंक में जमा किया जा सकता है। दूसरे तरीके जैसे पानी की टंकी, तालाब आदि कम से कम 4 से 6 महीने के लिए भूमि जल स्तर के उपयोग को घटाने में मदद करते हैं। पता है, वर्षा जल संचयन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से भूमि के जल स्तर को फिर से बनाने में मदद करता है। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक घर, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाए। जब हम वर्षा की प्रत्येक बूंद को सहेजेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रेडियो वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और

0: बात कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल

0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक

0: हाँ ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म

0: बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
1: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
2: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
3: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
2: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
3: कैसे चित्र?
2: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
2: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए।
2: आई
1: देखो वेलेंडा, ये अजगर का चित्र।
3: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
1: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
3: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
1: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहाँ आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलेंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
3: सच?
1: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।
9: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
10: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो में भी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना आइए सुनते हैं फुकरे फिल्म से सोना महापात्रा के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फुकरे फिल्म का ये तराना, और आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी 2 फिल्म से ये तराना। स्वर केके का है, तनवीर गाजी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राशिद खान ने।

श्रोता, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत दिया है नीलाद्री कुमार ने। फिल्म का नाम है लैला मजनू।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राज न्यू फिल्म का ये तराना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मर्डर 2 का ये तराना।

श्रोताओ, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रेडियो वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: आज वाराणसी में चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया। ये स्कीम 12 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले और उनके जेर किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करती है।
1: 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थायी या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा।
0: उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 10 लाख असातिज़ा और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के समाजी तहफ्फुज़ के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आला ने यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1.10 करोड़ तालिबे इल्म के वालिदैन के खातों में DBT के जरिए 1200 रुपये फी तालिबे इल्म मुंतकिल किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर आला आज चित्रकूट और मानिकपुर असेंबली हलकों में 951 करोड़ रुपये के 124 अवामी बहबूद के मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज़ किया है। वज़ीर आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपये के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनो के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन इजला पर किया जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसलाही इकदाम किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास इजला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अवलिन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसका मकसद 20,000 से ज़्यादा ज़रई कारोबारी अफराद और 20 लाख किसानों को बाख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रई तरक्की, खुशहाल गाँव और खुशहाल किसानों की ज़रूरत पर जोर दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के गबन के बावजूद यहां आने वाले अकीदतमंदों की तादाद और उनकी जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ किया जाएगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने एक खत में कहा कि वो SIT की हतमी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने खिलाफ तमाम इल्जाम का जवाब देंगे। इस दरमियान राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के 3 मुलजमीन का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है। पुलिस उन्हें जेल से पुलिस लाइंस ले गई। वहां तीनों मुलजमीन का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस नकदी और जेवरात बरामद करने की कोशिश करेगी जिनकी उन्होंने शनाख्त की थी। रियासती वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्ज़ापुर में एक मल्टीपर्पज़ खाद, बीज और तौसीई मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को जदीद वसायल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को प्रगति का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कॉम्पिटिटिव युग में अपनी नौकरी को बचाकर रखना और सफलता पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर व्यक्ति अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, पर इसके लिए योग्यता और अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास स्किल्स और टिप्स की जरूरत पड़ती है, ताकि बहनों आप अपने काम में संतुलन और समझदारी बना के रखें। बहनों, आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई अन्य जगह हो, सभी जगह समय के साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अध्यापिका हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स करें, वर्कशॉप सेमिनार्स में भाग लें और कार्य क्षेत्र से संबंधित किताबें व आर्टिकल्स पढ़ें, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आदि करें। इस तरह लगातार सीखते रहने से आपका काम सही रहेगा। बहनों, टीम वर्क भी आपके काम को मजबूती देता है। दूसरों के विचारों का सम्मान करें और अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करें। अपने ऑफिस के या स्कूल के लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले करने की आदत डालें। जो काम आप दूसरों को सौंप सकती हैं, उन्हें दूसरों को सौंप दें, ताकि आपका काम हल्का हो जाए। बहनों, यदि आप ये चाहती हैं कि आपके कार्य क्षेत्र और आपके घर दोनों में ही संतुलन बना रहे, तो अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से करिए, यानी कि आपको आज क्या क्या काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। इससे आपका समय प्रबंधन बेहतर होता है और बेवजह का तनाव कम होता है। काम के दौरान आप लगातार चेयर पर बैठी ना रहें, क्योंकि ऑफिस में जो बहनें काम करती हैं वो लगातार एक ही जगह चेयर पर बैठी रहती हैं। तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, स्ट्रेचिंग करें और गहरी सांसें लें, बीच बीच में पानी भी पिएं। इससे आपकी कार्यक्षमता बराबर बनी रहेगी। थोड़े समय के लिए डिजिटल उपकरणों से ब्रेक लें, इससे आप तरोताजा महसूस करेंगी। और अपने कार्य करने की सीमा निर्धारित करें। काम के घंटों के बाद काम से संबंधित ईमेल व सूचनाएं ना देखें। जैसे कि कुछ बहनें ऑफिस से घर पहुंचने पर भी ऑफिस के काम से संबंधित ईमेल और सूचनाएं देखती रहती हैं, उनका जवाब देती रहती हैं। इससे आपके घर और ऑफिस का संतुलन बिगड़ता है। इस तरह बहनों, आप अपने कार्य क्षेत्र में जब सही निर्णय लेंगी, सब काम समय पर करेंगी, तो आपके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक कार्यों में संतुलन बना रहेगा। आइए अब सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: बहनों, कहानियाँ हमारे जीवन, समाज और व्यक्तिगत विकास का एक अभिन्न अंग है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य सिखाती हैं, हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और दूसरों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करती हैं। तो आइए, आज हम आपको सुनवाते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है गौरी और कहानीकार हैं नम्रता सिंघल।
1: एक छोटा सा गांव था। वहां चारों तरफ धूमधाम और खुशी का माहौल था। गौरी और ओम की शादी हो रही थी। गौरी की उम्र 8 साल और ओम 10 साल का था। जिन्हें शादी का मतलब नहीं पता, उनका गांव की परंपरा के अनुसार बाल विवाह हो रहा था। विवाह के पश्चात गौरी ससुराल आ गई। उसे खेलने कूदने, लड़ने झगड़ने के लिए एक साथी मिल गया। दोनों दिन भर इसी तरह पूरा दिन काट देते। कुछ समय इसी तरह बीत गया। एक दिन दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी ओम को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहीं से गौरी का जीवन बदल गया और उस पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले ओम की मृत्यु का कारण गौरी को ठहराने लगे। बात बात पर ताने देते, मारते पीटते, खाना नहीं देते।

बुरा भला कहते और घर का सारा काम करवाते। बेचारी गौरी, जिसको किसी बात की समझ नहीं थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसके परिवार का व्यवहार इतना बदल क्यों गया। एक तो वह अपने साथी के खो जाने से वैसे ही अकेलापन महसूस कर रही थी और ऊपर से घर वाले परेशान कर रहे थे। बेचारी पूरा दिन रो रो के सब काम करती। गौरी के माँ बाप को जब यह पता चला तो वह उसे वहां से ले आए। घर में उसका एक बड़ा भाई श्याम भी था, जिसे गौरी का लौटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु गौरी अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन जब वह अपने माता पिता को रोते देखती तो उसे यह समझ नहीं आता कि यह रो क्यों रहे हैं। वे अपनी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन मासूम गौरी को यह तक नहीं पता था कि वह विधवा भी हो चुकी है। वह बहुत मेहनती और होशियार थी, अपने माता पिता को खुश रखने का पूरा प्रयास करती। इसी तरह समय कटता रहा। अब गौरी छोटी सी बच्ची से एक सुंदर युवती बन गई। उसका स्वभाव बहुत कोमल था। वह बहुत मेहनती थी। घर का काम, खेती बाड़ी का काम वह सब अकेले कर लेती, लेकिन उसका भाई उतना ही कामचोर था। जब उसके माता पिता गौरी की तारीफ करते तो वह चिढ़ जाता और उल्टा सीधा कहता और घर में झगड़ा करता। उसके व्यवहार से सभी दुखी रहते। उसकी पत्नी भी गौरी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उसके विधवा हो जाने पर, माँ बाप के घर रहने पर ऐसे ऐसे ताने देती कि गौरी का दिल छलनी हो जाता। अब वह बड़ी हो गई थी, उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। वह दिन भर रोती रहती, कुछ ना कर पाती। इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसके पिता ने घर का बंटवारा कर दिया और स्वयं गौरी के साथ रहने लगे। यह बात भी श्याम को खल गई। उसने अपने पिता से कहा कि तुमने गौरी को अपना समझा और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। अब मेरी भी आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। गौरी ही आपकी बेटी है तो वह ही आपका सब कुछ कर लेगी। श्याम के इस तरह के व्यवहार से और गौरी की चिंता ने उसके पिता को बीमार कर दिया। गौरी ने पूरी सेवा की, उधार लिया, इलाज करवाया, लेकिन सब बेकार। वह श्याम के पास भी गई, उसे पिता की अवस्था के बारे में बताया, लेकिन श्याम ने उसे जली कटी सुनाकर बेइज्जत किया। वह अपमानित होकर वहां से लौट आई। यह सब देखकर गौरी के पिता ने अपने मित्र जो गांव के सरपंच थे उन्हें बुलाकर कहा, मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, मेरे बाद इसके पिता आप ही हैं, क्योंकि श्याम से तो कोई उम्मीद है नहीं। मेरे बाद इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। यह कहकर वह एकदम शांत हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी श्याम उन्हें देखने नहीं आया। उसने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। गौरी ने ही अपने पिता का दाह संस्कार व अन्य क्रियाकर्म किए। अब गौरी के ऊपर अपनी माँ को संभालने की जिम्मेदारी थी। वह उनका पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करके खेतों में काम करने निकल जाती। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात माँ एकदम गुमसुम सी हो गई थी। श्याम का गौरी के प्रति कटु व्यवहार, गौरी का वैधव्य और उसके भविष्य की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। पति का साया भी उठ चुका था। यह सब सोच सोच कर वह भी बीमार रहने लगी। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। गौरी के सामने समस्या यह थी कि वह घर से बाहर कमाने जाए या माँ की सेवा करे। फिर भी वह दोनों तरफ कुशलता से संभाल रही थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ ज्यादा बीमार हो गई, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब गौरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके मददगार सिर्फ सरपंच साहिब ही थे। गौरी ने उनसे उधार लेकर माँ का भी दाह संस्कार किया। इस प्रकार उस पर काफी कर्जा हो गया, जिसे चुकाना ही अब उसका उद्देश्य बन गया था। वह दिन रात मेहनत करती और धीरे धीरे अपना कर्जा चुका रही थी। तभी एक दिन सरपंच जी ने गौरी से कहा कि तुम्हारे पिता मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पुनर्विवाह कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन गौरी ने मना कर दिया कि वह पहले अपना पूरा कर्जा चुकाएगी, फिर तय करेगी कि उसे क्या करना है। और यह भी कहा कि अगर मेरी किस्मत में शादी का सुख ही होता

0: तो मैं विधवा ही क्यों होती। अब मेरा पुनर्विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। सरपंच जी चुप हो गए। धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत से उसने कुछ सालों में अपना पूरा कर्जा चुका दिया। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते और उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन गौरी तैयार नहीं होती। एक दिन फिर सरपंच जी ने कहा, बेटी तुम मेरी बात से इनकार ना करो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। गौरी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपको मुझसे कुछ कहने में संकोच कैसा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब उन्होंने उसके सामने अपने पुत्र से शादी करने का प्रस्ताव रखा और यह भी बताया कि उनका पुत्र भी उसको पसंद करता है और शादी करना चाहता है। यह सुनकर वह अवाक रह गई, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी और वह उच्च कुल के, इसके अलावा वह बाल विधवा भी थी, जिसे कुछ लोग कुलच्छनी भी कहते थे। तब गौरी ने यह बात सरपंच से कही तो उन्होंने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं तो गांव की बाल विवाह की परंपरा का भी विरोधी हूँ, और यदि तुम बाल विधवा हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, मैं तो बस तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। अब गौरी के पास इनकार करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके हाँ करने पर उसका विवाह सरपंच जी के पुत्र से हो गया और उसके कष्टों भरे जीवन में फिर से बहार आ गई।
1: बहनों, अभी आपने कहानी सुनी जिसका शीर्षक था गौरी और कहानीकार थी नम्रता सिंघल। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

बहनों, मेरी माटी मेरा देश सेगमेंट के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना के बारे में। बहनों, जब आप अपने घरों में पंखे या एसी की ठंडी हवा में बैठती हो या स्विच दबाते ही जब पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है, तो कभी आपने सोचा है कि इस बिजली के पीछे हमारे देश के इंजीनियरों की कितनी बड़ी तपस्या छिपी है। हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना की। बहनों, ये परियोजना सतलज नदी पर बनी है। साल 1963 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देश को समर्पित किया था और इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहनों, इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे की ओर देखते हैं, तो धड़कनें थम सी जाती हैं। इतनी ऊंचाई कोई सहज बात नहीं है। पर बहनों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर बिजली कैसे बनती है। बहनों, भाखड़ा और नांगल के दोनों किनारों पर लगे विशाल पावर हाउस दिन रात घूमते हैं। जब पहाड़ों से पानी बेहद तेज रफ्तार से नीचे आता है, तो यहाँ लगी बड़ी बड़ी टर्बाइनें नाचने लगती हैं और इसी नाच से पैदा होती है लगभग 1480 मेगावाट बिजली। सोचिए, 1480 मेगावाट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये वो ऊर्जा है जो पंजाब के हरे भरे खेतों में ट्यूबवेल चलाती है, हरियाणा और राजस्थान के उद्योगों का पहिया घुमाती है और दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश के लाखों घरों को रोशन करती है। उत्तर भारत के उद्योग 24 घंटे बिजली की वजह से ही दौड़ रहे हैं। बहनों, मुझे आपसे ये कहना है कि भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक है। सतलज नदी पर बनी यह परियोजना उत्तरी भारत के राज्यों के औद्योगिक और कृषि विकास का एक मुख्य आधार है। यहाँ पैदा होने वाली बिजली को हाई टेंशन लाइनों के जरिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ को सप्लाई किया जाता है। इसलिए बहनों, बिजली हमारे लिए बहुत कीमती है। कमरे से बाहर निकलते समय स्विच खुले ना छोड़ें, उन्हें बंद कर

0: मैंनो आज के डिजिटल युग में जहां हमारी सुबह मोबाइल में गुड मॉर्निंग के नोटिफिकेशन से होती है और रात रील स्क्रॉल करते हुए, वहां एक बेहद खूबसूरत आदत कहीं पीछे छूटती जा रही है। हाँ बहनो, हम बात कर रहे हैं किताब पढ़ने की आदत की। आजकल हमारा अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में इतना व्यस्त रहता है कि हमें किताब के पन्नों को पलटने का एहसास याद ही नहीं है। सोशल मीडिया से मिलने वाला इंस्टेंट डोपामाइन, जो आपको तुरंत सुख मिलता है, हमें कुछ देर के लिए तो खुशी देता है, लेकिन जो सुकून और गहराई एक अच्छी किताब दे सकती है, वह स्क्रीन की नीली रोशनी कभी नहीं दे सकती। बहनों, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद शाम को चाय की चुस्की के साथ कोई अच्छी किताब पढ़ना किसी थेरेपी से कम नहीं है। किताबें पढ़ने से हमारी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और एकाग्रता बढ़ती है। ये हमें बेहतर समझ और ज्ञान देती हैं। बहनों, जब किताबें पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना किताबें पढ़ने की आदत आज ही डाल लें, आज से ही शुरुआत कर लें। तो हम बताते हैं कि आप शुरुआत कैसे कर सकती हैं। तो बहनों, सब पहले ही दिन ऐसा ना करें कि 500 पन्नों का भारी भरकम उपन्यास लेकर बैठ जाएं और उसको देखकर ही आप डर जाएं कि भाई ये तो मैं नहीं पढ़ सकती। आप रोज सिर्फ 5 या 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखें और अपनी पसंद की किताब का चुनाव करें। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी सहेली या घर का कोई दूसरा सदस्य ये किताब पढ़ रहा है तो आप भी उसी किताब का चयन कर लें। आप अपनी पसंद की कॉमिक, कहानी, सस्पेंस थ्रिलर या कविता की कोई भी किताब ले सकती हैं। रात को सोने से पहले या सुबह की चाय के साथ केवल 15 मिनट आप किताबों के नाम कर दीजिए, यानी कि किताब जरूर पढ़िए जिसका आपने चयन किया है। पढ़ते समय फोन को साइलेंट मोड पर कर दीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, या ये भी कर सकती हैं कि आप फोन को दूसरे कमरे में रख दें। बहनों, किताबें पढ़ना कोई काम या कोई टास्क नहीं है, ये तो केवल अपने आप से मिलने का एक जरिया है। तो बहनों, देर किस बात की, आज ही अपनी मनपसंद किताब का चयन कीजिए और किताबें पढ़िए। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, अब आपको बताते हैं कि बात पते की सेगमेंट में ग्रीन टी के फायदे। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है और हमारी सब बहनें क्योंकि पतला होना चाहती हैं, तो वो अगर ग्रीन टी पिएंगी तो ये ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे हमारा वजन कम होता है, दिल को स्वस्थ रखती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और त्वचा में भी निखार लाती है। तो बहनों, आज से शुरू कर दीजिए एक कप ग्रीन टी सुबह या शाम। अब प्रगति को जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वीरेंद्र सोनी के स्वर में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

श्रोता वीरेंद्र सोनी की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। इंतजार कीजिए कुछ पलों का।

0: Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष

0: महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देश के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद

0: शिक्षकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षा

0: स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अनीता सेन का गायन।

श्रोता, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीता सेन का गायन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम में 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:46 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाज है लता मंगेशकर और मन्ना डे की। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत रोटी कपड़ा और मकान से। स्वर लता मंगेशकर का है, वर्मा मलिक के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है हम आपके हैं कौन फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर का है, स्वर लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का है। शब्द रचना रविंद्र रावल की है और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

श्रोताओ, अगला गीत आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। स्वर अलका याग्निक का है, समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कसूर फिल्म का ये गीत। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की थी। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं तड़ीपार फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में।

श्रोता, इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और मीडियम वेव के मीटर्स पर हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के प्रसारण के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है हिंदी समाचारों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान

0: हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय में के बारे में, साथ ही जानकारी देंगे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राधा गोविंद दास का धमार गायन प्रसारित किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा युववाणी शाम 5:30 बजे। इसमें जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा, राष्ट्र के समग्र आर्थिक आकार का द्योतक है सकल घरेलू उत्पाद, विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। ये वार्ता प्रसारित करेंगे आशुतोष तिवारी। आइए जाने क्रम में आप जानकारी लेंगे डीएनए पहचान तकनीक विषय पर। जीने की कला क्रम में सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है महत्वाकांक्षा विषय पर बातचीत होगी। और चलते चलते आप सुनेंगे आज के हम सफर। ग्रामीणों कार्यक्रम में 6:00 बजे सुनिएगा चर्चा महिला सामर्थ्य योजना। वार्ता प्रसारित की जाएगी आम की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर तेजराज सिंह हांडा। इसी कार्यक्रम में नई किस्में विषय पर जानकारी होगी। मंडी भाव होंगे और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा मजदूर मंडल 6:30 पर। इसमें प्रदूषण नियंत्रण और समाज विषय पर चर्चा के अलावा श्रमिक श्रोता सुनेंगे अरविंद कुमार दोहरे का काव्य पाठ, आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और फिल्म संगीत। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर सुनिएगा पूर्णिमा सुधाकर की वार्ता, विकास की आंधी में गुम होते जीवन मूल्य। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक आप सुनेंगे रात्रि 8:00 बजे और चित्रपट संगीत 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। कुछ और फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 बजे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का विषय रहेगा सत्याग्रह और समय रहेगा।

6:25। श्री रामचरित मानस गान सुनेगा 6:35 पर और 6:45 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में हर रोज की तरह वार्ता प्रसारित की जाएगी। डॉक्टर जेपी सिंह की वार्ता का विषय रहेगा कृषि कार्यों के समक्ष सूक्ष्म लघु उद्योग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर डायबिटीज कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर मनोज शर्मा से बातचीत करेंगे पृथ्वीराज चौहान। दैनिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास प्रातः 7:31 पर और लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे सुनीता धाकड़ के गाए लोकगीत। पूर्वाहन 11:30 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। कल का विषय रहेगा हरियाली और खुशहाली। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 5:10 हुए हैं। अप्रस्तुत है भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

0: इलाका फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। अनजान की रचना को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: परवाना फिल्म की भक्ति रचना अब हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर, फरीद सावरी और साथियों के स्वर में। समीर की रचना को संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

परवाना फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी विनोद राठौर, फरीद साबरी और साथियों के स्वर में। इस रचना को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मरते दम तक फिल्म की ये भक्ति रचना, जिसे आवाजें ली है महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार और साथियों ने। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है।

मरते दम तक। इस फिल्म का भक्ति गीत आपने सुना महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार और साथियों के स्वर में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था। इसके साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम यपानी में। और माइक्रोफोन पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने होस्ट अपेक्षा शाक्या को। दोस्तों, हमेशा की तरह हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सीधे तौर पर अफेक्ट करते हैं। एक समय था जब पॉकेट मनी में भी काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता था, लेकिन आज वही पॉकेट मनी शायद कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ही ख़त्म हो जाए, जैसे रेंट, फूड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और अब डिजिटल सब्सक्रिप्शंस तक। हमारी लाइफस्टाइल के कई हिस्सों का खर्च बढ़ रहा है। इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग की और जानेंगे कि बदलते समय में हम अपने फाइनेंसेस को स्मार्ट वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। मुझे घर के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मंगानी थी। मैंने ऐप खोली, सामान कार्ट में डाला और मैं पे करने ही वाली थी, लेकिन चेकआउट पर देखा कि डिलीवरी चार्ज उस सामान की कीमत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। फिर मन में आया, चलो दो चार चीज़ें और कार्ट में ऐड कर देती हूँ, शायद डिलीवरी चार्ज कम हो जाए या फ्री डिलीवरी मिल जाए। और यहीं मैंने सोचा, क्या मैंने सच में ज़रूरत का सामान खरीदा या सिर्फ डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए ज़्यादा खर्च कर दिया। दरअसल यही आज की डिजिटल इकोनॉमी का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हमें कन्वीनियंस देती हैं, समय बचता है, सामान घर तक आ जाता है, लेकिन कई बार ऑफर्स, फ्री डिलीवरी थ्रेशोल्ड, कॉम्बो डील्स या कैशबैक के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी उस समय ज़रूरत नहीं होती। देखने में लगता है हमने पैसा बचा लिया, लेकिन अगर सिर्फ 30 या 40 रुपए की डिलीवरी फ़ी बचाने के लिए 300 से 400 का सामान खरीद लिया तो क्या आप सच में बचत कर रहे हैं? दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, ये हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स से भी इफ़ेक्ट होती हैं। आज हमारे खर्चों में सिर्फ किराया, बिजली और राशन ही नहीं, बल्कि फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, OTT सब्सक्रिप्शंस और ऑनलाइन कन्वीनियंस भी शामिल हो चुके हैं। छोटी छोटी डिजिटल परचेजेस महीने के अंत में मिलकर एक बड़ा खर्च बन सकती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ ना करें, बल्कि चेकआउट से पहले ये ज़रूर चेक करें कि ये आपकी ज़रूरत का सामान है या सिर्फ एक इम्पल्स परचेज। क्योंकि आज जब हर चीज़ रेंट, एजुकेशन, ट्रेवल, इंटरनेट और डेली नीड्स पहले के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि खर्च पड़ रहे हैं, बल्कि

0: ये है कि हम अपने खर्चों को समझदारी से कैसे संभालें। दोस्तों, जरूरत और इच्छा में फर्क समझें, अपना अपना नीड और वांट समझें। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है जो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन मार्केट में नया मॉडल लॉन्च होता है और आपको लगता है कि मुझे भी नया फोन चाहिए। यहाँ पुराना फोन आपकी नीड पूरी कर रहा है, जबकि नया फोन आपकी वांट हो सकती है। आप चाहें तो 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। 50% इम्पोर्टेंट एक्सपेंस, 30% पर्सनल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और 20% आपकी सेविंग्स। अचानक बीमारी, नौकरी में बदलाव या किसी ज़रूरी सिचुएशन के लिए थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी फंड जमा ज़रूर करें। स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं आप अपनी, नई स्किल सीखना, सर्टिफिकेशन करना, कम्युनिकेशन या डिजिटल स्किल्स डेवलप करना। आज कई एप्स एक्सपेंस ट्रैकिंग करने में हेल्प करते हैं। हर मंथ अपने एक्सपेंस ट्रैक करने से पता चलता है पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ बचत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल है। छोटी छोटी हैबिट्स जैसे अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग अवॉइड करना, सेविंग्स की आदत डालना, एमरजेंसी फंड्स बनाना और स्किल्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। याद रखिए, इनकम बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपेंसेस मैनेज करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की कि बढ़ती कीमतें हमारी डेली लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देश में महंगाई को मेजर कैसे किया जाता है? तो आज का हमारा सवाल इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, भारत में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मेनली किस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या ऑप्शन डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप सही जवाब सोचिए, तब तक हम बुलाते हैं वार्ताकार आशुतोष तिवारी को, जो युवाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। विषय है, राष्ट्र के समग्र आर्थिक आकार का द्योतक है सकल घरेलू उत्पाद।
1: दोस्तों, आज का दौर आर्थिक समझ का दौर है। हम सब आजकल जीडीपी, महंगाई दर, विकास दर जैसे शब्दों को समाचारों, बहसों और सोशल मीडिया पर बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में होता क्या है, और यह देश के विकास, सरकार की नीतियों और आम जनता की जिंदगी से कैसे जुड़ा है? आइए आज हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम संक्षेप में जीडीपी कहते हैं, किसी देश के भीतर की निश्चित समय में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पन्न की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो एक साल में भारत में जितना कुछ बनाया गया, चाहे वह मोबाइल फोन हो, गेहूं की फसल हो, ट्रक से की गई ढुलाई हो या किसी डॉक्टर की सेवा, उन सब की कुल कीमत को जोड़ दिया जाए तो जो आंकड़ा आता है वही जीडीपी है। अब सवाल ये आता है कि जीडीपी का इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, क्योंकि जीडीपी यह दर्शाती है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उसमें कितना उत्पादन हो रहा है और लोगों के पास खर्च करने की क्षमता कितनी है। जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियां कितनी तेज हैं, रोजगार के कितने अवसर बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब में कुछ ज्यादा ही पैसा आ रहा है। दूसरी ओर अगर जीडीपी घटती है तो यह चिंता का विषय होता है। इसका अर्थ ये है कि देश की आर्थिक गति धीमी हो रही है, उद्योग ठंडे पड़ रहे हैं और रोजगार की संभावनाएं घट रही हैं। जीडीपी की गणना तीन प्रमुख तरीकों से की जाती है। सबसे पहला है उत्पादन विधि, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि कृषि उद्योग

और सेवा क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। दोस्तों, दूसरा तरीका है आय विधि यानी कि इनकम मेथड। इसमें यह जोड़ा जाता है कि लोगों ने कुल मिलाकर कितनी आय अर्जित की, जैसे वेतन, लाभ, किराया, ब्याज इत्यादि। तथा आखिरी है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें यह मापा जाता है कि उपभोक्ताओं, सरकार और निवेशकों ने कुल कितना खर्च किया है। इन तीनों विधियों से निकाला आंकड़ा सामान्यतः एक ही परिणाम देता है और यही जीडीपी होता है। साथियों, जीडीपी को दो प्रकारों में भी देखा जा सकता है। पहला है संचालित जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, यानी जिसमें मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को ध्यान में नहीं रखा जाता। दूसरा है स्थिर जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी, इसमें महंगाई की दर को घटाकर वास्तविक विकास को दर्शाया जाता है। सरकार और अर्थशास्त्री आम तौर पर रियल जीडीपी को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये वास्तव में बताता है कि उत्पादन कितना बढ़ा है, ना कि सिर्फ कीमतें। दोस्तों, भारत में जीडीपी मुख्यतः तीन क्षेत्रों से मिलकर बनी है। पहला है कृषि क्षेत्र, जिसमें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि शामिल हैं। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि निर्माण, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि। और आखिरी है सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, पर्यटन इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, आज भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जो लगभग 50% से अधिक है। इसके बाद आता है उद्योग और फिर आता है कृषि। अब एक आम श्रोता यह सोच सकता है कि जीडीपी से मुझे क्या? इसका उत्तर है बहुत कुछ। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर होता है। नौकरियां बढ़ती हैं, वेतन बढ़ने की संभावना होती है, सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आता है, जिससे वे सड़कें, स्कूल, अस्पताल इन पर ज़्यादा खर्च कर सकती है। जीवन का स्तर ऊंचा होता है। वहीं अगर जीडीपी घटती है तो महंगाई बढ़ सकती है, बेरोजगारी का संकट आ सकता है और सरकार की योजनाओं में कटौती हो सकती है। जीडीपी के विकास में सरकार की नीतियां बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, इंटरनेट इन पर निवेश करती है तो उद्योग बढ़ते हैं। अगर सरकार स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर खर्च करती है तो मानव संसाधन मजबूत होता है। टैक्स नीतियां अगर व्यापार अनुकूल होती हैं तो निवेशक देश की ओर आकर्षित होते हैं। सरकार द्वारा किए गए स्टिमुलस पैकेज, सब्सिडी या मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम जीडीपी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए जीडीपी सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण करने का भी आधार है। साथियों, जीडीपी का उपयोग देश की तुलना के लिए भी किया जाता है। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की जीडीपी बहुत ऊंची है, इसलिए वे आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर माने जाते हैं। लेकिन भारत भी कम नहीं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर विकास दर ऐसे ही बनी रही तो जल्द ही हम तीसरे स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। यह न केवल राष्ट्र गर्व का विषय है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि भारत निवेश के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। हालांकि जीडीपी एक अहम संकेतक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी शामिल हैं। यह केवल आर्थिक उत्पादन को नहीं नापता, यह केवल आर्थिक उत्पादन को मापता है। इसमें सामाजिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य या शिक्षा की गुणवत्ता शामिल नहीं होती। जीडीपी बढ़ने के बावजूद अगर असमानता बढ़ रही हो, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हो और गरीब वहीं के वहीं, तो यह टिकाऊ विकास नहीं कहलाएगा। इसलिए नीति निर्माता जीडीपी के साथ साथ संपूर्ण विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करने लगते हैं। तो साथियों, जीडीपी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवंत प्रतिबिंब है और उस परिश्रम का जो करोड़ों भारतीय प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। यह किसान के खेत में बहाए गए पसीने से लेकर एक इंजीनियर की लैब में बिताई गई रातों, एक शिक्षक की कक्षा में दी गई शिक्षा, एक डॉक्टर की सेवा, एक उद्यमी का जोखिम और एक मजदूर की मेहनत तक फैला हुआ है। देश की जीडीपी जितनी अधिक मजबूत होगी, देश उतना ही आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक मंच पर सशक्त होगा।

0: लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली विकास तब होता है जब इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, जब एक गांव का बच्चा भी गुणवत्ता शिक्षा पाए, जब हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, जब हर हाथ को काम मिले, जब हर घर में आर्थिक सुरक्षा हो। इसलिए अब हमें केवल जीडीपी की गति नहीं, बल्कि उसकी गहराई, गुणवत्ता, समावेशिता पर भी ध्यान देना होगा। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा जो न केवल उत्पादन करे बल्कि समान अवसर भी दे, जो न केवल निर्माण करे बल्कि मानवीय गरिमा को भी मजबूत करे। हम सब देश के नागरिक होने के नाते इस प्रक्रिया के भागीदार हैं। हर छोटा या बड़ा योगदान, चाहे वह समय पर कर चुकाना हो, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना हो, ऊर्जा की बचत करना हो या रोजगार सृजन में भाग लेना हो, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बन सकता है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था तभी स्थायी रूप से प्रगति करेगी जब हम सभी मिलकर अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। एक भारत की कल्पना सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उस समाज में होती है जहां आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण भी सुनिश्चित हो। जीडीपी इस दिशा में हमारी एक झलक देता है, लेकिन असली तस्वीर हम सब मिलकर रंगते हैं। आइए हम सब सिर्फ जीडीपी की बढ़ोतरी की बात ना करें, बल्कि एक ऐसे भारत की ओर कदम बढ़ाएं जहां विकास समावेशी, सतत और सबके लिए हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक ये कह सके, मैं देश की प्रगति में भागीदार हूं, सिर्फ उसका दर्शक नहीं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आशुतोष तिवारी को, जिन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। और अब वक्त है आज के सवाल के सही जवाब का। तो सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ। भारत में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मेनली किस इंडेक्स का यूज किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, इसी इंडेक्स के आधार पर आम उपभोक्ताओं द्वारा रोज़मर्रा की वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का आकलन किया जाता है। अब जब इतनी ब्रेन वर्कआउट हो गया है, तो क्यों ना मन को शांत करें एक गीत के साथ। आइए सुनते हैं ये गीत।

वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्यों पानी और अब वक्त है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करने का। दोस्तों सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके नाम, उसके डॉक्यूमेंट्स या उसकी तस्वीर से नहीं हो पाए, तो क्या हमारे शरीर में ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी पहचान बता सकती है? जी हाँ, इसका जवाब है हमारा DNA, यानी डी ऑक्सी राइबोक्लियोनिक एसिड। हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हमारी आवाज़ अलग होती है और उसी तरह हमारे DNA में भी एक यूनिक पैटर्न होता है। इसी खासियत की वजह से DNA आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी आज साइंस की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में से एक बन चुकी है। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर DNA से पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जैसे ब्लड, सलाइवा, हेयर रूट या स्किन सेल्स। इसके बाद उस सैंपल से DNA को अलग किया जाता है। फिर DNA के कुछ खास हिस्सों को एनालाइज किया जाता है और एक DNA प्रोफाइल तैयार किया जाता है। इस प्रोफाइल को किसी दूसरे DNA सैंपल से कंपेयर किया जाता है। अगर पैटर्न्स मैच होते हैं तो पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। दोस्तों जब हम DNA आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की इमेज सामने आती है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे मिसिंग पर्सन और डिज़ास्टर आइडेंटिफिकेशन, कई बार कोई भी डिज़ास्टर के बाद लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में DNA टेक्नोलॉजी फैमिलीज तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद कर सकती है। मेडिकल रिसर्च में भी DNA का बहुत इम्पोर्टेंस है। साइंटिस्ट जीन्स को समझकर जेनेटिक डिसीजेस पर रिसर्च कर रहे हैं और बेहतर ट्रीटमेंट्स विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अलग अलग स्पीसीज की पहचान और संरक्षण में मदद मिलती है। दोस्तों DNA हमारे शरीर में मौजूद एक तरह का जेनेटिक कोड है, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो DNA हमारे शरीर का एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट जीने की कला की ओर, जिसमें आज का विषय है सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशन। दोस्तों नॉलेज हमें नई चीज़ें सिखाती है, लेकिन सही माइंडसेट हमें उन चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। दोस्तों अक्सर हम एम्बिशन वर्ड सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा आखिर होती क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो एम्बिशन यानी अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा। यही इच्छा हमें हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास कोई लक्ष्य ही ना हो तो शायद उसे

ये भी पता नहीं होगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए एम्बिशन हमारी लाइफ का एक कंपास है जो हमें डायरेक्शन देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो देश के लिए खेलना चाहते हैं, या कोई युवा उद्यमी है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, हर अचीवमेंट की शुरुआत एक छोटे से सपने और एम्बिशन से होती है। लेकिन हर एम्बिशन अच्छा नहीं होता। आगे बढ़ने की चाह हमें हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और बेहतर इंसान बनाती है, तो वह पॉजिटिव एम्बिशन है। लेकिन अगर वही चाह हमें दूसरे से जलस होने, गलत रास्ता अपनाने या किसी भी कीमत पर जीतने की सोच दे, तो फिर हमें अपने लक्ष्य से ज़्यादा अपने तरीके पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया पर हम रोज़ किसी न किसी को सक्सेसफुल देखते हैं। कोई नई जॉब की खुशी शेयर कर रहा है, कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। ऐसे में कई बार हमें अपनी तुलना दूसरों से करनी पड़ती है। दोस्तों, याद रखिए, ये हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो यही रियल प्रोग्रेस है। आइए इसी सोच के साथ तो एक छोटा सा विराम लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, एम्बिशन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाती है हमारी मेहनत, हमारा धैर्य और हमारी ईमानदारी। तेज चलना जरूरी नहीं, सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी चलते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सोच के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आप सुन रहे थे अपेक्षा शाक्या को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, कई दिन की गर्मी और उमस के बाद आज का दिन बरसात का दिन रहा, तो गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली, पर आज आपसे मुलाकात करने के लिए सड़कों पर भरे पानी और तमाम फिसलन वाले रास्तों का सामना करना पड़ा। पर एक सावधानी जो मैंने बरती थी कि घर से निकलते समय बरसाती पहन ली थी, जिसने मुझे भीगने से काफ़ी बचाया। दोस्तों, ऐसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर सही समय पर हम सही कदम उठा लें तो बहुत सी परेशानियों से हम बच सकते हैं। साथियों, कहा जाता है कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ सशक्त होती हैं। इसी सोच के साथ महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपसे बात करेंगे महिला सामर्थ्य योजना की। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाना है। आज समाज में महिलाओं की स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में अनेक महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अवसरों की कमी, आर्थिक कठिनाइयों या सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। महिला सामर्थ्य योजना ऐसी ही महिलाओं के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण, स्वरोजगार के अवसर, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की सुविधा और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी और बहुत सारे उद्योगों जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जाता है। लेकिन साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब उनकी जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए इस योजना की जानकारी हर महिला तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना में डिजिटल साक्षरता और लघु उद्यमों का प्रशिक्षण भी शामिल है। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को बैंक ऋण, सरकारी सहायता तथा उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। कई जगह पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करके बचत और निवेश की आदत भी विकसित की जाती है। इससे महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। इस योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, परिवार की आय में बढ़ोतरी, महिलाओं का सामाजिक सम्मान बढ़ना, उनके व्यक्तित्व का विकास और कौशल विकास भी होता है। इसके साथ साथ महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में वृद्धि होती है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ पाती हैं। साथियों, इस योजना का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती हैं तब वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान देती हैं। महिलाओं की रोजगार से बेरोजगारी घटती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में सहयोग, नेतृत्व और सामूहिक निर्णय लेने की भावना का भी विकास होता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि सामाजिक विकास को भी गति मिलती है। महिला सामर्थ्य योजना बहुत लाभकारी है, लेकिन फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में

अनेक महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं होती और इसके अलावा प्रशिक्षण के बाद बाजार से जुड़ने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कुछ महिलाओं को अपने उत्पाद की उचित बिक्री भी नहीं मिल पाती। इसलिए ये भी आवश्यक है कि योजना के साथ विपणन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय सहायता को भी मजबूत बनाया जाए। इस योजना में सरकार प्रत्येक समूह को 15,000 रुपये की शुरुआती निधि देती है। साथियों, अब मुख्य बात पर चर्चा करते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। और अब बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन किस प्रकार किया जाए और कहाँ किया जाए। तो आवेदन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे ये योजना महिला और बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज आपके पास होने अनिवार्य हैं, जैसे कि आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाता विवरण और मतदाता प्रमाण पत्र। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को महिला और बाल विकास उत्तर प्रदेश कार्यालय में जाना होगा, जहां आवेदक को उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे अच्छी तरह से भर करके जमा करना होगा। आवेदन को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको पूरी जानकारी दी महिला सामर्थ्य योजना के बारे में। और आइए अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अल्प विराम से पहले हमने लोकगीत सुना था सुखलेश के मधुर स्वर में। इस समय बाजार में आमों की बहार है। वैसे भी आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। दिन पर दिन बढ़ती तकनीक ने खेती के तमाम वैज्ञानिक तरीकों को जन्म दिया है, जिससे आम की फसल में भी पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक खेती के प्रयोग से बढ़ोतरी की जा रही है और लाभ भी देखने को मिल रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर तेज राज सिंह हाड़ा। विषय है आम की वैज्ञानिक खेती।
2: आज हम चर्चा करेंगे आम की वैज्ञानिक खेती पर। आम भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान आम की खेती से अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक आम की बात है, फलों में सर्वाधिक विटामिन ए आम में पाया जाता है, जो कि 4800 इंटरनेशनल यूनिट होता है। विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके फल ताजा खाने के साथ साथ जूस, पल्प, अचार, जैम और स्क्वैश बनाने में भी उपयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आम के लिए उपयुक्त जलवायु एवं मिट्टी की। तो इसके लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। जहाँ मृदा की बात करते हैं, गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए तथा अच्छी जल निकास वाली भूमि इसके लिए श्रेष्ठ रहती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। जल भराव वाले क्षेत्रों में आम का बगीचा नहीं लगाना चाहिए एवं जहाँ पर मिट्टी काली होती है वहाँ पर भी आम की खेती नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आम की प्रमुख किस्में और उनकी विशेषताओं की। आम की महत्वपूर्ण किस्में हैं दशहरी, उत्तर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय किस्म है। फल इसके मध्यम आकार के होते हैं, गूदेदार, अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। यह फसल जून जुलाई में पकती है। लंगड़ा हरे रंग का फल तथा गूदा रेशा रहित होता है। उत्कृष्ट स्वाद के कारण इसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। बनारस क्षेत्र का यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। चौसा के फल सर्वाधिक मीठे होते हैं। फल इसके बड़े आकार के होते हैं एवं रसदार होते हैं। यह देर से पकने वाली किस्म है।

अन्य किस्में हैं बम्बई, जो जल्दी पकती है, आम्रपाली, यह दशहरी और नीलम का संकर है। इसके वृक्ष बौने होते हैं तथा ये सघन बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आम्रपाली को रोपण के लिए 2.5 x 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं मल्लिका, यह नीलम तथा दशहरी का संकर है। फल इसके बड़े आकार के होते हैं तथा उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। केसर आम की अन्य किस्म है, यह गुजरात क्षेत्र में उगाई जाती है। इसका गूदा केसरिया रंग का और अत्यंत स्वादिष्ट होता है। यह प्रसंस्करण में भी उपयुक्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण किस्म अल्फांजो, इसको हाफूस भी कहा जाता है तथा भारत से निर्यात के लिए यह बहुत प्रसिद्ध किस्म है। इसके फल उच्च गुणवत्ता एवं उत्कृष्ट स्वाद वाले होते हैं। अन्य इसकी एक्जोटिक किस्म भी होती है, जैसे टॉमी एटकिंस, सूर्या, यह लाल रंग का इनका छिलका होता है तथा देखने में आकर्षित होती है। अब इसकी बात करते हैं पौध रोपाई की, तो जुलाई से अगस्त का समय पौध रोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वप्रथम इसके लिए 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर तैयार किए जाते हैं और प्रति गड्ढे में 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। अगर खाद कच्ची है तो उसमें दीमक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सामान्य किस्मों के लिए 10 x 10 मीटर की दूरी रखी जाती है, लेकिन आम्रपाली जैसी बोनी किस्मों के लिए यह दूरी 2.5 x 2.5 मीटर रखी जाती है, जो सघन बागवानी के लिए पर्याप्त है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उसमें 1600 पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि पारंपरिक विधि में 10 x 10 मीटर से 100 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इसकी खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। फल देने वाले वृक्षों में प्रतिवर्ष 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस तथा 1 किलोग्राम पोटाश देना लाभकारी होता है। बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। नए पौधों को नियमित सिंचाई देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। फूल आने के समय अत्यधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए, अन्यथा फूल गिर जाते हैं। ड्रिप सिंचाई अपनाने से पानी की बचत तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। फल झड़ने की समस्या एवं प्रबंधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि आम में सामान्यतः 99.99% फल गिर जाते हैं। फल झड़ने के प्रमुख कारण की बात करते हैं तो इसमें पोषक तत्वों की कमी, पानी की कमी या अधिकता, तेज गर्म हवा है, कीट एवं रोगों का प्रकोप, हार्मोनल असंतुलन या परागण की कमी। तो इसके लिए फल झड़ने का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। बोरोन तथा जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। बाग बगीचे में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाकर परागण को सुधार किया जा सकता है। कीट एवं रोग नियंत्रण का समय समय पर उपचार करना चाहिए। और इसमें फलों को झड़ने से बचाने के लिए हार्मोन है NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, उसके 20 ppm का छिड़काव जब आम का फल मटर के आकार का होता है उस समय छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं आम के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन की। तो आम के प्रमुख कीट है आम का होपर, यह फूलों का रस चूसकर उत्पादन को कम कर देता है। अन्य है मिलीबग, यह नई शाखाओं में फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फल मक्खी फल में अंडे देकर गूदे को नष्ट कर देती है तथा यह फल मक्खी भारत से निर्यात होने वाले फलों के लिए बहुत ही खतरनाक कीड़ा माना जाता है, जो एक्सपोर्ट को प्रभावित करता है। अब नियंत्रण की बात करते हैं कीट एवं रोगों की। तो सबसे पहले बाग की साफ सफाई रखना चाहिए, गिरे हुए फलों को नष्ट कर देना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए ताकि उसमें नर कीट होते हैं वो आकर्षित होकर पकड़े जाते हैं और कीटों की संख्या कम हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशकों का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख रोगों की। पाउडरी मिल्ड्यू, फूलों पत्तियों पर सफेद रंग का चूर्ण दिखाई देता है, इसके लिए सल्फर डस्ट का छिड़काव करना चाहिए। एंथ्रेक्नोज, यह एक और अन्य महत्वपूर्ण बीमारी है, इसमें पत्तियों पुष्पक्रम तथा फलों पर काले धब्बे बनते हैं। डाईबैक, इसमें शाखाएं ऊपर से सूखने लगती है, इसलिए इसका भी उपचार करना बहुत जरूरी है। अब नियंत्रण के लिए बात करते हैं रोगग्रस्त शाखाओं की। सर्वप्रथम कटाई छटाई कर दें, स्वच्छता बनाए रखें और फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशी का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए। फल परिपक्व होने पर ही तुड़ाई करना चाहिए, लेकिन कुछ किस्मों में इसमें देहिक विकार लग जाते हैं, जैसे स्पंजी टिश्यू, उसके लिए फल को 3/4 परिपक्व अवस्था पर ही उसकी तुड़ाई करना चाहिए। फलों को डंठल से ही तोड़ना चाहिए। ग्रेडिंग एवं पैकिंग का विशेष ध्यान दें। एक स्वस्थ वृक्ष से किस्म एवं आयु के अनुसार 100 से 300 किलोग्राम तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यह किस्म और उसकी आयु पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धन की। तो किसान आम से अचार, जूस, पल्प, जैम, स्क्वेश बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। निर्यात योग्य किस्मों की खेती से भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, यदि आप उन्नत किस्मों का चयन, उचित सिंचाई, फल झड़ने का वैज्ञानिक प्रबंधन तथा कीट रोग नियंत्रण की आधुनिक

0: तकनीकों को अपनाते हैं तो आम की खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।
1: साथियों, अभी आपने ये वार्ता सुनी, आम की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार थे डॉक्टर तेजराज सिंह हाड़ा। हमें उम्मीद है कि आप इस उपयोगी जानकारी का अवश्य लाभ लेंगे।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, नई किस्मों में आज हम बात करेंगे गुणों से भरपूर अरुगुला हरी सब्जी की, जिसे तारा मीरा या रॉकेट लोफ भी कहते हैं। एक पौष्टिक और तीखे स्वाद वाली हरे पत्तेदार सब्जी अरुगुला है, जो 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका उपयोग सलाद, पिज्ज़ा और सैंडविच में भी खूब होता है। यह विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जी है। ठंडे स्थानों और रेतीली दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी पहचान होती है। एक बार लगाने के बाद इसकी 6 से 8 बार कटिंग ले सकते हैं। अरुगुला को 4 से 6 घंटे धूप या हल्की छाया में रखना चाहिए। 6 इंच गहरे गमले में इसकी बुआई की जाती है, लेकिन इसके लिए उचित जल निकासी का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। मिट्टी को हल्का गीला रखना चाहिए और बीजों को लगभग 1/4 इंच गहराई और 1 से 2 इंच दूरी पर बोने के बाद हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। पानी इतना देना चाहिए, ये सावधानी वाली बात है कि पानी सिर्फ इतना देना चाहिए कि मिट्टी में नमी बनी रहे और ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई ना की जाए। जल भराव से बचे, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं। और साथियों, इसकी अच्छी वृद्धि के लिए 50% सामान्य मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत या कोको पिट मिलाकर के मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार बेहतर होती है। तो ये तो हमने आपको नई किस्म अरुगुला हरी सब्जी के बारे में जानकारी दी, और अब समय है आपको मंडी भाव की जानकारी देने का। मसूर दाल 7,720 रुपये से 7,900 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,520 रुपये से 9,750 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,370 रुपये से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरहर दाल 9,320 रुपये से 9,600 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 6,520 रुपये से 6,780 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं 2,590 रुपये से 2,640 रुपये प्रति क्विंटल और जौ 2,540 रुपये से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये तो थे मंडी भाव, और अब आपको मौसम की जानकारी भी दे दें। आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही साथ कभी कभी तेज बरसात तो कभी कभी बूंदाबांदी होती रही। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और साथियों, आइए फिर से चलते हैं लोकगीतों की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत समवेत स्वर में।

तो साथियों, आज हमने महिला सामर्थ्य योजना के बारे में बात की, साथ ही हमने नई किस्म के बारे में भी आपको जानकारी दी। इसके अलावा हमने आम की वैज्ञानिक खेती पर उपयोगी वार्ता भी सुनी और इसके साथ साथ मधुर लोकगीतों का आनंद भी लिया। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अनुमति दीजिए आप सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

नमस्कार श्रमिक श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी मनीषा अरोरा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और बताइए कैसे हैं आप सभी भाई? मानसून ने तो दस्तक दे ही दी है, तभी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और गर्मी से भी राहत मिली है, फिर भी काम तो करना ही है, है ना भाई? अब देखिए ना, जिंदगी भी बड़ी मजेदार चीज है। कभी तो काम इतना होता है कि लगता है कि बस आज जल्दी से शाम हो जाए तो घर जाएं, वहीं कभी छुट्टी मिल जाती है तो 2 घंटे बाद ही मन कहता है अरे अब क्या करें। भाई वैसे एक बात बताइए, आपको कौन सी जगह ज्यादा अच्छी लगती है? वो जगह जहाँ पर सुबह सुबह चिड़ियों की आवाजें आती हैं, उनकी चहचहाहट सुनाई देने लगती है, पेड़ों की छांव होती है, हल्की सी हवा चेहरे को छू जाती है, या फिर वो वाली जगह जहाँ चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही हो, गाड़ियों का धुआं उड़ रहा हो, तेज शोर हो रहा हो और सांस लेना भी मुश्किल लगे? जवाब तो हम सभी जानते हैं कि आप क्या देंगे। तो फिर किसे साफ और सुकून देने वाला माहौल अच्छा नहीं लगता? बस यहीं से जुड़ती है आज की हमारी बात, प्रदूषण नियंत्रण और समाज। साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि अरे मेरे अकेले से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक एक करके 100 लोग यही सोच लें तो फर्क कितना बड़ा हो जाएगा। चलिए एक छोटी सी मिसाल लेकर आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के बाहर हर दिन एक एक आदमी बस एक मुट्ठी कूड़ा उठाए और वहां पर फेंक दे, तो पहले तो कुछ दिन वहां कुछ दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन महीने भर के बाद वही जगह कूड़े का ढेर बन जाएगी। यानी कि छोटी गलती जब बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो बड़ी समस्या बन जाती है। प्रदूषण भी बिल्कुल ऐसा ही है साथियों। हवा में धुआं, जमीन पर प्लास्टिक, नालों में कूड़ा, तेज आवाजें, ये सब मिलकर हमारे आसपास के माहौल को खराब करते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, बुजुर्गों पर पड़ता है और मेहनत करने वाले लोगों पर भी पड़ता है। थकान, जी हाँ, थकान जल्दी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और बीमारियां भी बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी हमारे ही हाथ में है। भाई काम खत्म होने के बाद कूड़े को सही जगह पर डालना चाहिए। प्लास्टिक का, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे वातावरण के लिए, उसका भी कम से कम इस्तेमाल करना। पानी को बचा कर रखना, जी हाँ, पानी को बेवजह नहीं बहाना क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है। पेड़ पौधों की देखभाल करना, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हम सबको जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और न जाने कितनी सारी चीज़ें देते हैं, और जहाँ तक ज़रूरत हो दूसरों को प्यार से समझाना। साथियों, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए साथियों, समाज सिर्फ इमारतों से नहीं बनता बल्कि हम सब से बनता है, और जब समाज का हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है तभी वातावरण भी साफ रहता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी। तो आइए आज बस इतना सा वादा करें अपने आप से

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीणलोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब श्रमिक श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कि जहां तक हो सके प्रदूषण कम करेंगे, सफाई अपनाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इस नेक काम में अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि जो साफ हवा होती है, साफ पानी होता है और जो साफ सोच होती है, यही स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है, है ना साथियों? तो चलिए फिर इसी से जुड़ा आज का प्रश्न भी बता दीजिए। आपको बताना है कि विश्व प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से सोच लीजिए, इसका जवाब हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के अंत तक। तो उससे पहले आनंद उठा लीजिए इस गीत का भी।

0: That's right.
1: साथियों, शब्द जब भावनाओं का हाथ थाम लेते हैं तो वो कविता बन जाते हैं, और कविता सीधे दिल से संवाद करती है। तो आइए कुछ पल रोजमर्रा की भागदौड़ से निकलकर शब्दों की इस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं अरविंद कुमार दोहरे का ये काव्य पाठ।
2: घर में अंधेरा था, दिया ढूंढने निकले हम, चांद सितारों का पता ढूंढने निकले। इस दौर के इंसान में हया कम ही मिलेगी, हैरत है हम अब भी हया ढूंढने निकले। हर रंग में देखा है उसे समझे नहीं हम, दिल में था खुदा फिर भी खुदा ढूंढने निकले। अपनी तो खताओं पे नज़र की ही नहीं हमने, औरों की खताओं पे खता ढूंढने निकले। देखी है वफा हमने हसीनों में, तभी तो अरविंद हसीनों में वफा ढूंढने निकले। मैं जमी पर हूँ मगर तुम तो फलक बनती हो, दोस्ती में भी अदावत की झलक बनती हो। रात अंधेरी है तो कुछ दिल का उजाला कीजिए, तुम तो शम्मा हो मेरे घर की चमक बनती हो। दिल में रहती हो तो दिल चैन में रहता है मेरा, वरना हर लम्हा मेरे दिल की कशक बनती हो। सोने चांदी की खनक से मुझे मतलब क्या है, तुम मेरे दिल में मोहब्बत की खनक बनती हो। फूल से पांव हैं आपके माना, लेकिन सर पहाड़ों के झुके ऐसी धमक बनती हो। तुम किसी भी लहजे में अरविंद से कर लेना खिताब, लुत्फ आता है मुझे जब भी नमक बनती हो। एक किताब, फूल भी चुभने लगे अब खार तो फिर खार हैं, उनको भी समझे हैं हम जो खुशनुमा गुलजार हैं। जिंदगी उस मोड़ पे अब लेके आई है मुझे, देखता हूँ जिस तरफ तूफान के आसार हैं। जख्मे दिल हमने सिए यूं आंसुओं के तार से, चुपके चुपके रो लिए मिलकर दरो दीवार से। जिंदगी थककर किसी भी राह में रुक जाएगी, कर नहीं सकती तकाविल वक्त की रफ्तार से। जो कहेंगे आप लौहे वक्त पर होगा रकम, कौल की तस्दीक होगी मुस्तनद किरदार से। जाने क्या मजबूरियां होंगी जो इतना गिर गया, जो खरा होता है वो गिरता नहीं मेयार से। क्यों फिक्रे शहर की दस्तार पर हैरत न हो, बेशकीमत है अमीरे शहर की दस्तार से। लोग दौलत दे के मिट्टी के खिलौने ले गए, हम न ला पाए दवाए दर्द भी बाजार से। दस्त को अरविंद कहिए लाख फूलों का हिसार, खाकी तुमको मिलेगी नाम के गुलजार से। फूल भी चुभने लगे अब खार तो फिर खार हैं, उनको भी समझे हैं हम जो खुशनुमा गुलजार हैं। जिंदगी उस मोड़ पे अब लेके आई है मुझे, देखता हूँ जिस तरफ तूफान के आसार हैं। तुम सूरज बनो और न सूरज को आंखें दिखाओ, अभी वक्त है तुम अब भी संभल जाओ। गुरूर आग है खुद को जलाकर राख कर देगी, अगर खुद से लड़ो तो खुद में पिघल जाओ। समंदर भी झुका करता है प्यासे की हथेली पर, अगर कतरा हो तो दरिया से निकल जाओ। किसी की रूह के जख्मों पे नमक मत छिड़काओ, दवा बन सको तो दर्द में घुल जाओ। समीर ये अंधेरा उम्र भर का तो नहीं होता, चिराग हाथ में ले लो और घर घर चले जाओ। कभी हम ढूंढते थे खुद को उसकी चश्मे तर में,

0: कि जैसे कोई कतरा ढूंढता हो खुद को समंदर में, किसी की एक झलक पर उम्र भर का चैन मिलता था, वो चेहरा अब नजर आता नहीं किसी रह गुजर में। जिसे हम सफर कहते थे वो अब अजनबी सा था, हमारा नाम तक महफूज नहीं उसकी खबर में। कभी जो हर्फ थे लब पर वो अब पत्थर हुए जाते, हमारी बात का अब भी कोई मतलब नहीं असर में। किसी की याद में दिल आयना था साफ सफाक, वो आयना धुंधला पड़ा है गर्दे सफर में। जिसे हम जीस्त कहते थे वो अब लम्हा लम्हा है, हमारी सांस भी शामिल नहीं अब अपनी उम्र में। कभी जो ख्वाब थे आंखों में वो अब खाक हो बैठे, हमारा चांद भी जलता नहीं अब अपने ही घर में। जिसे हम इश्क कहते थे वो अब नासूर बन बैठा, हमारे दर्द की तशखीस नहीं किसी के जिगर में। ये मुझतर इश्क की महफिल से यूं खाली गया समीर, कि खुद की ही नजर में वो रहा अब तक नजर में। जो दिल में हो सुकून हाल उस पर ही यकीन हो, मेरी हर सांस का हासिल वही तस्कीन हो। न दौलत न शोहरत की तलब दिल में जरा, बस तेरी याद का दिल में कोई तमकीन हो। तेरे वादे की हकीकत पे भरोसा है मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों में वही ताइन हो। न हो हसरत न हो नफरत न हो दुनिया का मलाल, दिल से दिल तक की जो निस्बत हो वही दीन हो। मैं समीर अपनी अना को भी मिटा दूं तेरे लिए, मेरे किरदार की कीमत तेरी तहसीन हो। एक नज़्म, इसकी प्यास ऐसी कि समंदर भी कम लगे, किस तरह ओस से प्यास बुझे तरीके खोजिए। रात भर सींचा है आंसुओं से जख्मे दिल, सुबह की शबनम से कोई घाव पूरे तरीके खोजिए। वक्त की आंधी में उड़ गए रिश्तों के पर, टूटे हुए धागों को फिर से कैसे गुथें तरीके खोजिए। सांसों में धुआं है चिरागे उम्मीद बुझा, अंधेरे में भी कोई दिया जले तरीके खोजिए। तन्हाई काटती है साया भी साथ नहीं, अपने ही दर्द से दोस्ती करे तरीके खोजिए। लफ्ज गले में अटके बात होंठों तक ना आई, खामोशी में भी कोई फरियाद सुने तरीके खोजिए। मक्ता, समीर मंजिल बहुत दूर पांव लहू लुहान, छालों के साथ भी सफर करे तरीके खोजिए। मैं जमी पर हूं मगर तुम तो फलक बनती हो, मैं जमी पर हूं मगर तुम तो फलक बनती हो, दोस्ती में भी अदावत की झलक बनती हो। रात अंधेरी है तो कुछ दिल का उजाला कीजिए, तुम तो शम्मा हो मेरे घर की चमक बनती हो। दिल में रहती हो तो दिल चैन में रहता है मेरा, वरना हर लम्हा मेरे दिल की कसक बनती हो। सोने चांदी की खनक से मुझे मतलब क्या है, तुम मेरे दिल में मोहब्बत की खनक बनती हो। फूल से पांव हैं आपके माना लेकिन, फूल से पांव हैं आपके माना लेकिन, सर पहाड़ों की झुके ऐसी धमक बनती हो। तुम किसी भी लहजे में अरविंद से कर लेना खिताब, लुत्फ आता है मुझे जब भी नमक बनती हो। न बंदिश है तुझ पर न पहरा न ताला, तेरा रक्त जीवन का है एक उजाला। अंधेरे मिटा दे सवेरा जगा दे, तेरा नाम ही तो है एक उजाला। जब दुनिया डराए ये आंधी सताए, तू दीपक की लौ बन के राहें दिखाए। किसी के लिए तू है पतझड़ का पाला, किसी के दिल का तू सवेरा उजाला। न बंदिश है तुझ पर न पहरा न ताला, सियासत के बादल सच पर हैं ताले, मगर तेरी बातों के सूरज निराले। तू गिरकर संभालता तू लड़कर निखारता, तेरी हिम्मतों का चेहरा है उजाला। न बंदिश है तुझ पर न पहरा न ताला, सुनो तो जमाना कहे लाख काला, मगर मेरी सांसों में तू ही उजाला। तू रुकना नहीं तू झुकना नहीं, तेरे हौसलों का पहरा उजाला। न बंदिश है तुझ पर न पहरा न ताला।
1: साथियों, अभी आप अरविंद कुमार दोहरे से सुन रहे थे ये काव्य पाठ। उम्मीद करते हैं आपको कि काव्य पाठ जरूर पसंद आया होगा।

0: तो अब लेते हैं ये क्षणिक अंतराल।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ते। उनके लिए कुर्सी से ज्यादा मायने रखते हैं लोग। जानते हैं साथियों, ऐसे लोग भीड़ से दूर नहीं बल्कि लोगों के बीच रहकर ही उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक नेता के बारे में आज हम बात करेंगे ज्ञान सागर के अंतर्गत, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियों को समझा। उनकी साफगोई और ईमानदारी की चर्चा आज भी होती है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे चंद्रशेखर जी ने छात्र जीवन से ही समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1990 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भले ही कुछ महीनों का रहा, लेकिन उस कठिन समय में उन्होंने देश को संभालने की पूरी कोशिश की। वो हमेशा कहते थे कि नेता वही है जो जनता के सुख दुख को अपना समझे। आज 8 जुलाई उनकी पुण्यतिथि पर आइए हम इस सादगीपूर्ण और जन सेवा के लिए समर्पित नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: साथियों, बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी बनती। अपनी सेहत का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, तो फिर चलिए इस मौसम में आपको जरूरी सेहत टिप्स दे देते हैं। वैसे तो सभी मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बारिश का जो मौसम होता है ना, खास तौर से बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। तो ऐसे में नदी, नल या गंदा पानी बिल्कुल ना पिए, सिर्फ उबला हुआ पानी या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। बासी और खुला खाना बिल्कुल ना खाएं, इससे टाइफाइड और उल्टी दस्त हो जाते हैं। और भीगने से बचें। भाई, काम पर जाते समय आप रेनकोट या छाता अपने साथ लेकर जाएं, साथ ही पैरों में प्लास्टिक के जूते या चप्पल जरूर पहनें, क्योंकि अगर आप भीग जाएंगे तो उससे बुखार, जुकाम और निमोनिया भी हो सकता है। और अगर आप भीग भी गए हैं तो तुरंत कपड़े सुखा के दूसरे कपड़े पहन लें। गीले कपड़े देर तक पहनने से खुजली हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और त्वचा की बीमारी भी हो सकती है। हो सके तो बैग में एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रखें। इस समय में गड्ढों में भरे पानी में मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं, तो रात में मच्छरदानी लगा कर रखें। डेंगू और मलेरिया इसी मौसम में सबसे ज्यादा पनपते हैं। इसके अलावा पैरों की सफाई भी आपको रखना बहुत जरूरी है। कीचड़ में काम

करने के बाद पैर धोकर अच्छे से सुखाएं, उंगलियों के बीच में पाउडर लगाएं, जिससे पैर गलने और घाव नहीं होंगे। साथियों, बारिश में जो खुले तार होते हैं या बिजली के जो खंभे होते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, तो ऐसे में आप इनसे दूर रहें। कीचड़ वाली जगह पर धीरे चलें ताकि फिसल कर हड्डी टूटने का खतरा ना रहे। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय का आनंद उठाएं, सूप पिएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल रोटी खाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बाहर के जो कटे हुए फल होते हैं या गोलगप्पे वगैरह या चाट होती है इस मौसम में ना खाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दो दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, बदन दर्द है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अपना इलाज खुद से ना करें, आराम करें, पूरी नींद लें, अपना ख्याल रखें, अपने साथी मजदूरों का भी ख्याल रखें। छोटी भी कोई भी बीमारी हो उसे बड़ी ना बनने दें। तो आप इन टिप्स को और मजदूरों तक भी पहुंचाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, साथ ही आनंद उठाएं इस बरसात के गीत का।

साथियों, हमने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब है 2 दिसंबर को। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसके संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the last 8. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 7:10 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम विविधा का। श्रोताओ, आज की विविधा कार्यक्रम में सुनते हैं पूर्णिमा सुधाकर की वार्ता, विकास की आंधी में गुम होते जीवन मूल्य।
2: आज जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति विकास उन्मुख है। पिछले 2 दशकों में क्या चिकित्सा, क्या प्रौद्योगिकी, क्या कृषि, क्या विज्ञान, क्या कंप्यूटर, क्या सूचना प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। विकास एवं प्रगति के दौर में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ देने को तत्पर है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी श्रेष्ठता इस बात में प्रदर्शित करना चाहता है कि उसके पास में दूसरे से अधिक भौतिक संसाधन हों, दूसरे से अधिक भौतिक सुख सुविधाएँ हों। उसके लिए इसका कोई मायने नहीं है कि वे भौतिक सुख सुविधाएं कैसे जुटाएं, किसकी कीमत पर जुटाएं। किसी के पास एक मकान है तो वह दूसरे मकान की चाह रखता है और उसे पाने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करने से नहीं चूकता। यह भूलकर भी कि ऐसे लोग हैं जिनके पास में एक मकान नहीं है, फुटपाथों पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। जबकि नैतिकता यह कहती है कि जब आपका काम एक मकान से चल सकता है तो दूसरे मकान की चाह ही क्यों। सबसे बड़ा जीवन मूल्य यह है कि इस पृथ्वी के सभी संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का हक है। पहले कहा भी जाता था कि वायु, जल व भोजन में सबका साझा है, परंतु जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, पृथ्वी के संसाधनों का दोहन अपनी सुख सुविधाओं के लिए होना शुरू हुआ, जिसे ही हम विकास कहने लगे। जो व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कर रहा है, वह उतना ही विकसित कहला रहा है। ऐसे में जीवन मूल्यों की बात करना ही गौण हो जाता है। हमारे यहाँ एक अति उत्कृष्ट सिद्धांत था जो जीवन मूल्यों से जुड़ा था। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। कितने लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि देखा तो यह जा रहा है कि तथाकथित विकसित देशों में खाने पीने, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं जुटाने के नाम पर बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, उन लोगों की कीमत पर जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। आराम और सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐश आराम की बात तो दूर है। परस्पर मेल मिलाप, भाईचारा, सहयोग, ये जीवन मूल्य रहा करते थे जिन पर समाज टिका होता था। आज बहुमंजिला इमारतों में, महानगरों की पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को नहीं जानते। मेल मिलाप, भाईचारा, सहयोग इत्यादि की बात कौन करे। हर चीज एक यंत्रवत हो गई है। जैसे सुबह पंछी अपने दड़बे से निकलकर शाम को अपने दड़बे में दाखिल हो जाता है, उसी प्रकार महानगरीय सभ्यता का व्यक्ति सुबह अपने फ्लैट से निकलकर शाम को उसी में दाखिल हो जाता है। यह इतना यंत्रवत है कि किसी और के लिए वक्त ही नहीं है। फिर मूल्य पनपेंगे कैसे, वे तो दम तोड़ेंगे ही। विकास ने हमें एक और चीज सिखाई है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा सही मायने में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, ये इन प्रकारेण लक्ष्य को प्राप्त करने की होड़। गांधी जी कहा करते थे कि जीवन में साधन और साध्य की पवित्रता बहुत जरूरी है। ईट गेट द जस्टिफाइड एंड बाय द जस्टिफाइड मीन्स। विकास की अंधी दौड़ ने इसका स्वरूप बदल कर गेट द एंड बाय एनी मीन्स कर दिया, अर्थात किसी भी प्रकार साध्य को हासिल करो। यह सर्वथा जीवन मूल्यों के विपरीत है और इसी की परिणति है कि आज AIEEE, IAS, RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। पहले इस प्रकार की बात सुनने देखने को नहीं मिलती थी। एक 70 या 80 वर्ष के व्यक्ति को इसका विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है कि प्रतियोगी या अन्य परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पहले ही बाजार में आ गया। जो लोग 6 लाख या उससे अधिक रुपए में प्रश्न पत्र खरीद कर प्रौद्योगिकी के संस्थान में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, वे कैसे इंजीनियर या डॉक्टर होंगे, यह समझने की बात है। उनके लिए जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। जब ऐसे लोग ही समाज का अंग हैं, तो ऐसे समाज में जीवन मूल्य दम तोड़ेंगे ही तो क्या करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा था कि आप मेरे बच्चे को सिखाइए।

0: कि नकल करके पास होने की अपेक्षा असफल हो जाना ज्यादा सम्मानजनक है। कहाँ है आज वह बात? आज सभी लोग उसे चराते हैं जो किसी भी प्रकार किसी भी युक्ति या जुगाड़ को लगाकर सफल हो जावे। असफल व्यक्ति को कौन सम्मान देगा? कितने बदल गए हैं हम, हमारा समाज, नाम आदर्श सोसाइटी, कारनामे घोटालों के। हुई ना बात, आँख के अंधे नाम नयन सुख। कभी इस देश में लोग कहा करते थे कि रिश्वत लेने वाला व देने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं। आज हम इसी देश में चर्चा करते हैं कि आज अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देना जायज ठहरा दिया जाना चाहिए। मतलब यह कि रिश्वत ना दे या ना दे सके उसका तो काम होगा ही नहीं। रिश्वत लेने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि रिश्वत के पैसे से अपने और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाएगा, इसे ही वह विकास मान बैठा है। कैसी विडंबना है इस आपाधापी और लूटमार के युग में। यदि किसी को क्षति हुई है तो वह है सच्चा इंसान जो जीवन मूल्य की परवाह करते हुए उन्हें जीना चाहता है, पर जीता है एक आह भरे हुए, कलेजे पर पत्थर रखते हुए। तुम्हारे इस विकास की अंधी दौड़ में कहाँ गुम हो गए जीवन मूल्य, सोचो और बताओ।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पूर्णिमा सुधाकर की वार्ता, विकास की आंधी में गुम होते जीवन मूल्य। वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में 7:17:20 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें, एक सुंदर चित्रकूट।

0: झूठ हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहां पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहां पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहां पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज तीन आरोपियों

0: जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व AITO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2,600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पुष्पा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये जो मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी नहीं, ये वो धरती है जहां हमने चलना सीखा है, जहां हमारे सपनों ने आकार लिया है और जहां हमारी पहचान बनी है। इस देश की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है, बलिदानों की कहानी है और भविष्य की उम्मीद भी। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है जानते हैं? भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग परंपराएं और अलग अलग विचार होते हुए भी हम सभी एक हैं। यही हमारे देश की ताकत भी है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबका सम्मान सबका अधिकार विषय पर।

श्रोताओ, हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के विकास में हर वर्ग का योगदान होता है। किसान खेतों में मेहनत करता है, मजदूर अपने पसीने से इमारतें खड़ी करता है, शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान देता है, डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इन सब के अलग अलग काम होते हुए भी सबका सम्मान एक सा है। आज के दौर में महिलाओं का योगदान भी दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय था जब महिलाओं को सीमित अवसर मिलते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं। महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, प्रशासन और सेना तक में अपनी क्षमताएं साबित कर रही हैं। आज की नारी सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभालती, बल्कि देश के विकास में भी बराबर की भागीदार है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर दे। जब समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता है, तभी वो समाज वास्तव में प्रगति करता है।

श्रोताओं, किसी भी समाज की मजबूती इस बात से तय होती है कि वहां हर व्यक्ति को कितना सम्मान मिलता है और उसे अपने अधिकार कितनी स्वतंत्रता से मिल पाते हैं। जब समाज में हर व्यक्ति की इज्जत होती है तभी वो आगे बढ़ता है। हमारे देश का संविधान भी हमें यही सिखाता है कि हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा क्षेत्र से संबंधित हो और किसी भी प्रकार की उसकी परंपरा हो, सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन अधिकारों की बात करना ही काफी नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी याद रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो हमें दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें तो हमें दूसरों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना होगा, उनकी भी रक्षा करनी होगी। आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि समाज तभी मजबूत बनता है जब उसमें समानता, भाईचारा, प्रेम और आपसी विश्वास हो।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा के साथ। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं सम्मान की और अपने कर्तव्यों की। दोस्तों सम्मान की शुरुआत घर से होती है। अगर हम अपने घर में अपने परिवार में अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हर व्यक्ति बराबर है तो धीरे धीरे ये भावना पूरे समाज में फैल सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी धार्मिक स्थिति पहनावे या काम के आधार पर उसका सम्मान कम या ज्यादा नहीं होता। एक सफाई कर्मचारी भी उतना ही सम्मान का अधिकारी है जितना कोई बड़ा अधिकारी, क्योंकि समाज की व्यवस्था हर व्यक्ति के योगदान से चलती है। आज का युवा वर्ग भी इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर युवा ठान ले कि समाज में ये भेदभाव को खत्म करेंगे तो देश की तस्वीर बदल सकती है। युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार हैं और बदलाव की ताकत भी है। अगर यही ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो हमारा देश और भी मजबूत बन सकता है।

नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की सबका सम्मान सबका अधिकार विषय पर। जी हाँ, जब हम सबका सम्मान करेंगे, सबको बराबर के अधिकार देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, हमें भी अधिकार मिलेंगे। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी करने होंगे, तभी हमें वो अधिकार मिल सकते हैं जिनके हम अधिकारी हैं। वरना तो सब एक दूसरे पर टालते रहेंगे कि आप करिए आप करिए। सम्मान सबको चाहिए, अधिकार कोई नहीं सब लेंगे, लेकिन कर्तव्य कोई नहीं करेगा। जहां अधिकारों की बात होती है वहां कर्तव्य अपने आप शामिल हो जाते हैं। बिना कर्तव्य के हमें अधिकार मिल ही नहीं सकते। इसलिए हमें जहां अपने अधिकारों की चिंता होती है वहीं अपने कर्तव्यों की सबसे पहले हमें चिंता करनी होगी। तभी जब हम कर्तव्य करेंगे तो हमें अधिकार मिलेंगे, और जब हमारा अधिकार होगा तो हमें सम्मान भी मिलेगा। और श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले के स्वर में। गीत रचना समीर की थी, संगीत संदेश शांडिल्य का। मैं तेरा आशिक, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, मुकेश मन्नाडे और साथियों की। योगेश के गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मैं तेरा आशिक, इस फिल्म का गीत सुना आपने? आशा भोसले, मुकेश मनाडी और साथियों के स्वर में। योगेश के गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। सुधाकर शर्मा की गीत रचना को आवाजें दी हैं बाबुल सुप्रियो, सुनिधि चौहान और साथियों ने। संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। आखिरी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। गोविंदा, चंकी पांडे, कुमार सानू, मोहम्मद अजीज और अरुण की आवाजों में। गीत इंदिवर का है, संगीत बप्पी लहरी का।
1: जो लोग चोरी करते हैं, सीना जोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे तो भला मेरा बंदर है। जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है, तो बचा लो, बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली।

0: किया, मगर बंदर ने हमारे लिए क्या किया?
1: क्या किया है? बाप ने हमें घर से निकाला,
0: बंद किया किस्मत का ताला, छीन लिया मुँह से निवाला, बन के बाप बंदर ने पाला
1: बाला।
0: बोला बच्चा बंदर अच्छा के बाप अच्छा।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आपका सुरूर फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीत हिमेश रेशमिया का है, आवाजें हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की।

आपका सुरूर। इस फिल्म का गीत आपने सुना हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों के स्वर में। समीर के गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

आपके साथ। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आपकी कसम फिल्म का गीत। गीत एक बार फिर आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: आपकी कसम, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की गीत रचना को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की गीत रचना आरती फिल्म से। रोशन के संगीत निर्देशन में आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हम दाना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल।

0: आरती फिल्म का गीत इस समय आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में। इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: फिर भी ये सब है अपने, मिलजुल कर देखे सपने।

0: हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता उब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और

0: उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते।

0: हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपये पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states.

0: और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा ख्वातीन सिंगल्स की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओ'नील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई तावुन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तावुन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निमटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अस सबा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात वाकयात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया।

0: किया। दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर में वाके मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनद को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संगे मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमुई बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिरा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से आज बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और केरलम के वजीर आला VD सतीशन से बात की। इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के वसी और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बुहरे अरब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकिया हिस्सों की जानिब आइंदा 2 दिन से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। IMD ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली NCR में आज कुछ बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संगे मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ठह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। NDRF की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सुपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमित कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुताल्लिक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुताल्लिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान एआईटीसी के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्स बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी

जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुरमुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्त्युक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3-6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3-7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वह दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिर रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियाँ रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए

0: आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एलिनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली यह हलचल भारत के मानसून को किस तरह प्रभावित करती है।
1: एलिनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहां जिस जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है। तो पूरे पैटर्न को, और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है। हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे भी शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई

0: करनी है वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए कि आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2000 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हो जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और

0: दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर

0: मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। इस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश की बात करना है, नहीं तो आपको केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले

0: जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा, जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया पर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी

0: अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जन्म जन्म, इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में अनजान की गीत रचना नमक हलाल फिल्म से, संगीत बप्पी लाहिरी का है।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना, ना।

आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म का गीत किशोर कुमार और अर्षा भोसले के स्वर में। अनजान की गीत रचना को संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने। वारिस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत रचना वर्मा मलिक की, संगीत उत्तम सिंह का।

वारिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। वर्णा मलिक की गीत रचना को संगीत दिया था उत्तम सिंह ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोहरत फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत रचना योगेश की और संगीत निखिल विनय का है।

पेंटर बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। मनोज कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था उत्तम सिंह ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राधा गोविंद दास का गाया राग दरबारी में धमार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राधा गोविंद दास का गाया राग दरबारी में धमार और सूल। आपके साथ पखावज पर संगत की रवि पंडित ने और सारंगी पर थे हयात हुसैन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त

0: कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia this evening on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looks forward to the talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jayashankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jayashankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial inter-Kuwait cooperation. Dr. Jayashankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Saleem Al Sabah. The External Affairs Minister spoke about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemn terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. The

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ कल सवेरे 5:53 पर इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।